फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा है। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसमें ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
3: आधुनिक युग में मोबाइल और इंटरनेट ने क्रांति सी ला दी है। बरसों से बिछड़े मित्र सोशल मीडिया पर मिलने लगे हैं। क्रांति के इस दौर ने बिछड़ों से मिलाया अवश्य है, परंतु रिश्तों की प्रगाढ़ता को भी कुछ कम किया है। 2 दशक पहले समाज में लोगों का घरों में आना जाना हुआ करता था। मोहल्ले और कस्बों में लोग बाहर खाट निकालकर गपशप लगाया करते थे। तेजी से बदलते इस परिवेश में अब वो दौर कहीं खो सा गया है। सोशल मीडिया का उपयोग गलत नहीं है, सोशल मीडिया ने अभूतपूर्व क्रांति समाज को दी है, परंतु यह भी परिलक्षित हो रहा है कि आपस में रूबरू होने के अवसरों को कुछ कम भी कर दिया है। हमारे आसपास क्या चल रहा है, आपके अपने भी कभी कभी आपसे कुछ खास बातें करना चाहते हैं, तब इस बात का ध्यान जरूरी है कि हम किस समय सोशल मीडिया का कितना उपयोग कर रहे हैं। रिश्ते बनाने से बनते हैं, रिश्ते मन की गहराइयों में बसते हैं, भावनाओं का सागर उसे नाम देता है। इन रिश्तों की अहमियत हमें पहचाननी होगी। हम पाते हैं कि चाहे घर का कोई कार्यक्रम हो, वैवाहिक समारोह हो या स्मशान में आता वैराग्यता का भाव, हाथ में चल रहा मोबाइल कई बार रुकता ही नहीं। मोबाइल का उपयोग करते कई बार हम सामने खड़े संबंधों को दरकिनार कर देते हैं, जो आपको रिश्तों के रूबरू एहसास से दूर कर देता है। जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। भाई भाई का रिश्ता, मां बाप का रिश्ता, यहां तक कि पति पत्नी के संबंधों में भी इन सोशल नेटवर्किंग के अधिक उपयोग से दरार आ जाने का खतरा बनने लगा है। रिश्ते पौधे की तरह होते हैं। जैसे पौधे को समय समय पर पानी और खाद की आवश्यकता होती है, वैसे ही रिश्तों में शीतलता बनी रहे, सद्भाव और प्रेम बढ़ता रहे, उसके लिए मुलाकात और व्यक्तिगत संबंध भी जरूरी हैं। आज हमारा वातावरण भौतिकवादी सोच का बन चुका है। आस पड़ोस में चल रही गतिविधियों का आभास घटना के घटित हो जाने के बाद होता है, जो समाज के सामने

0: चुनौतीपूर्ण है। सोशल मीडिया का उपयोग आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक भी है, परंतु इसकी आवश्यकता से ज्यादा उपभोग पर रिश्तों में खटास आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रिश्ते बनाइए, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से रूबरू होकर मेल मुलाकात बढ़ाइए, घर और परिवार में अपनी उपस्थिति से परिवार के सदस्यों में विश्वास का भाव जगाइए, फिर देखिए आपके व्यक्तित्व के चर्चे कायम होंगे। दैनिक दिनचर्या में रिश्तों को जोड़ने के लिए वक्त भी निकालिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद कई बार रिश्तों को आप दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। रिश्तों की अहमियत संस्कार के वृक्ष से आती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग ने युवाओं के ज्ञानार्जन की सीमा तो बढ़ा दी है, परंतु इसके कारण युवाओं के मन में कहीं न कहीं खालीपन का एहसास भी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बढ़ रहा है। इन कमियों को पूरा करने के लिए संबंधों में रूबरू बातचीत जरूरी है। एक दूसरे की तकलीफों को समझना, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी ओर से प्रयास ही रिश्तों में जान फूंकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग आज के परिवेश में अत्यावश्यक है, परंतु रिश्तों के लिए आवश्यक अन्य पहलू पर विचार भी जरूरी है। अपनों के लिए थोड़ा समय दें, आपकी प्रतिभावनाओं का सम्मान भी जरूरी है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं हरिओम शरण की रचना व उनके स्वर में ये भक्ति गीत। संगीत संयोजन है मुरली मनोहर स्वरूप का।
0: आधुनिक युग में

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
7: विविध भारती,
5: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जय माला
5: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
6: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
8: सखी सहेली,
6: बॉम्बे टॉकीज और
9: सेल्यूलॉइड के सितारे,
6: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
10: मुझे याद सब है जरा जरा।
5: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
6: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
5: मन का सुकून दिल की आरती
6: सुरीली संदली।
11: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए हरिओम शरण के गाए व निर्दोष के रचनाबद्ध किए व मुरली मनोहर स्वरूप के संगीतबद्ध किए इस भक्ति गीत को।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: मैली चादर ओढ़ के कैसे, ये थे इस भक्ति गीत के बोल जिसे लिखा हरिओम शरण ने और स्वर हरिओम शरण का, संगीत था मुरली मनोहर स्वरूप का। इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी एवं प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायगढ़।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ अभी हमारा आगामी खरीफ शुरू होने वाला है, तो हम कैसे को पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसान भाई ग्रीष्मकालीन जुताई को प्राथमिकता देते हुए ग्रीष्मकालीन जुताई कर सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई जो है ग्रीष्मकालीन जुताई करने के बाद में मानसून की स्थिति का जायजा ले सकते हैं कि मानसून आगामी वर्ष में किस प्रकार रहने वाला है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई चाहें तो अपना जो है पहले से तैयारी भूमि का तैयारी कर सकते हैं, भूमि को कैसे तैयार करके रखना है और हमको जो है जिस प्रकार की हमारी मिट्टी है उस प्रकार से हमको खेती का प्लानिंग करना पड़ता है कि हमको कौन सा फसल लेना है, कौन सा किस्म लेना है। उसके बाद में हमको जो है बीज की व्यवस्था पहले से करना पड़ता है। तो हम जो है जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारा फसल हम धान का फसल लेंगे या मक्का लेंगे, उसके बीज के लिए आप जो है तुरंत ही उसमें विभाग से संपर्क कर सकते हैं कि कौन कौन सा नए किस्म के बीज आए हैं और हमारे क्षेत्र के लिए कौन कौन संशोधित है, उन बीजों का भी चयन कर सकते हैं। धान में भी आज के समय में सुगंधित धान, पतला धान और बहुत अच्छे नए नए किस्म, हमारे पुराने जो किस्म थे उसका जो है म्यूटेंट करके नए किस्म बनाए हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। मक्का फसल भी किसान भाई चाहे तो ले सकते हैं और उड़द मूंग का फसल, अरहर का फसल दलहन तिलहन में इसको ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं तिलहन में। तो जिस प्रकार से लेना चाहते हैं उसका प्लानिंग किसान भाई को पहले ही करना पड़ता है। तो उसके बीज का व्यवस्था तत्काल किसान भाइयों को कर लेना चाहिए। अभी धान बीज का जो है सभी समितियों में भंडारण शुरू हो गया है, तो किसान भाई जो है समितियों से भी बीज जो है उठाव कर सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई जो बीज का व्यवस्था करने के बाद में उसका बीजोपचार हमको करना रहता है, तो बीजोपचार के लिए भी हमको जैविक छटाई करके साफ बीजों का चयन करके हम रख सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई उसका बुनी का विधि, हमको कैसे बुनी करना है, हमको किस प्रकार से फसल लेना है उसकी तैयारी कर सकते हैं ताकि किसान भाई को जो है उसमें सही समय में बुआई कर सके और सही मात्रा में बीज का उपयोग हो सके, जिससे जो है फसल की स्थिति अच्छी हो और उसका जो है बीज का सही उपयोग। इसके साथ ही हमको पूर्व से ही खाद की व्यवस्था, क्योंकि हम जो जैसे का हमारा फसल लगता है उसके पहले हम लोगों को डाल करके उसको खेतों में मिलाना रहता है, तो जैविक खाद का उसको उपयोग करना रहता है, तो उसका भी व्यवस्था कर लें यदि खुद के पास में है तो अच्छी। किसान भाई के पास नहीं है तो वह किसी भी अन्य किसान से, इसके अलावा कभी कुछ मात्रा देना पड़ता है। तो रासायनिक खाद की तैयारी के लिए आपको अगर उठाव की सलाह दें, किसान सकते हैं और परमिट कटा करके जो है समिति के माध्यम से हम रासायनिक खाद का व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो किसान भाई अभी से करेंगे ताकि हमको

0: और सही कितने वो सभी है। तो मैं आज में आप लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अग्रिम उठाव करें और सही बीज का चयन करके एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।
1: किसान भाई मन, का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता तो आज ही अपनावा हरी खाद, ढेचा, सनई, लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ती, कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: माटी के सांस लौटा ही हरी खाद, अंधाधुंध रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना ला सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते, सस्ता सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद। आज ही शुरुआत करो हरी खाद पर बीज मा ढेचा सनई मूंग जैसे बीज के उपयोग करो और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लखठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क कराओ।
2: इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

8:45 पर। 8 बजे समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी का प्रसारण समय होगा 8:30 का।

विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, आप सुन सकते हैं सुबह 9 बजे से, सुबह 11 बजे से और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। कार्यक्रम लोक संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आज सुबह 10:30 पर और रात्रि 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 बजे का। कार्यक्रम शामे गजल हम आपके लिए पेश करेंगे शाम 5:10 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज के गोठ के अंतर्गत सुनेगा आधुनिक भारत में सूचना क्रांति के प्रणेता राजीव गांधी विषय पर चर्चा। चर्चा के अंतर्गत विषय होगा नियमित जांच और सावधानी अपनाएं, कैंसर दूर भगाएं, इस विषय पर जानकारी। योजना के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। रांधबो कुडबो इस क्रम के अंतर्गत आज बातें होंगी गर्मियों में लाभदायक है शीतल पेय, इस विषय पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम किसानवाड़ी का समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा दुधारू पशुओं की प्रजनन समस्याओं का प्रबंधन। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनेगा सब्जी उत्पादन में मल्चिंग तकनीक अपनाएं, इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:20 पर, विविध संगीत रात्रि 10:00।

इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 18। गायक कलाकार है अनूप जलोटा और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं।

रामचरित मानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 18 अभी आप सुन रहे थे। स्वर अनुप जलोटा का था व संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इसके साथ ही मानस गान अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में कार्यक्रम देश गान।

हम भारत के रखवाले हैं, ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान के अंतर्गत। इसके साथ ही कार्यक्रम देशगान अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:55 पर संस्कृत में व 7 हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अंतिमं च चरणं सफलतया संपाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तंत्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौका वहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाहः, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिम बंगाल राज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगण मण्डलस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना 7वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचारों का अनुप्रसारण भी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म चाहत के चुनिंदा गाने। कार्यक्रम की पहली पेशकश में लीजिए सुनिए ये गाना कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वर में। गीत लिखा निदा फाजली ने और इस फिल्म के सभी गाने संगीतबद्ध किए अनु मलिक ने।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार, मेरा नाम रचना मित्तल है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के गौरवशाली अवसर पर मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। एक युवा महिला के रूप में आकाशवाणी मेरे जीवन में सिर्फ एक माध्यम ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। इसकी आवाज में वो अपनापन है जो हर उम्र और वर्ग के श्रोता को अपनी ओर खींच लेता है। चाहे सुबह की सकारात्मक शुरुआत हो, दिन भर की जानकारी हो या शाम के मधुर गीत, इसके रूप में हर पल एक सच्चा दोस्त साथ रहता है। आज के इस डिजिटल दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी सादगी, विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बनाए रखा है। यह मनोरंजन के साधन के साथ साथ शिक्षा, जागरूकता को संस्कृति का भी एक प्रबल माध्यम है। दूर दराज के क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच सराहनीय योग्य है। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने अनगिनत यादें बनाई हैं और लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। मैं कामना करती हूं कि आकाशवाणी इसी तरह अपनी मधुर आवाज और बेहतरीन कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरित करता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मेरी ओर से बधाई। धन्यवाद। रचना मित्तल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपालचंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: तुम हम टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और का संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। इस संदेश के पश्चात हम फिर एक बार आप सभी सुनने वालों का स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, जिसके अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं मशहूर बॉलीवुड फिल्म चाहत के चुनिंदा गाने। कार्यक्रम की अगली पेशकश में हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौड़ और का गाया ये गाना, जिसे लिखा नीरज पाठक ने और संगीत है अनु मलिक का। फिल्म का नाम चाहत और प्रोग्राम है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अलका याग्निक, विनोद राठौड़ व साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे यह गाना, जिसे लिखा निदा फासली ने और संगीत तैयार किया अनु मलिक ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार मित्रों, आज झरोखा में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त मिथिला। मित्रों, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हम दिनों के नाम याद किया करते थे। सारी उम्र दिनों के आधार पर हमारी दिनचर्या, हमारे जीवन के सारे कार्य चलते रहे। क्या मन में कभी ऐसी जिज्ञासा हुई कि आखिर इन दिनों के नाम का निर्धारण किस प्रकार हुआ होगा? आइए आज इस पर एक छोटी सी चर्चा करें। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रहों की वस्तु स्थिति इस प्रकार है। सूर्य, जिसे एक तारा माना गया है, तथा वरुण और अरुण पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण इनका प्रभाव अन्य ग्रहों पर कम पड़ता है। मुख्य ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि। ग्रहों का यह क्रम ही सप्ताह के दिनों यानी वारों का आधार है। मित्रों, वारों के नामकरण और क्रम में अहोरात अर्थात होरा की मुख्य भूमिका होती है। अतः दिनों के नामकरण जानने के पूर्व अहोरात या होरा के बारे में जानना भी जरूरी है। मित्रों, अहोरात सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक के समय को एक वासर, जो वार का संक्षिप्त नाम है, इसे अहोरात भी कहा जाता है, जिसमें 24 घंटे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम में दिन की शुरुआत मध्य रात्रि से होती है, जबकि वैदिक ज्योतिष में दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है।

संबंध रखने वाले सातों ग्रहों के कक्षाओं के अनुसार सात वार निश्चित किए हैं। मित्रों, चूंकि गणना करते समय प्रथम होरा सूर्य की थी, अतः प्रथम वार को सूर्य का वार अर्थात रविवार का नाम दिया गया, जिसे अंग्रेजी में हम संडे कहते हैं। सूर्यवार के 5 घंटे बाद 15वें और 22वें होरे में पुनः सूर्य का होरा होता है, सूर्य का स्थान होता है। इसके बाद 23वें में शुक्र का और 24वें घंटे में बुध की होरा होती है। 24 घंटे की समाप्ति के बाद एक अहोरात समाप्त हो जाती है और अगले दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय के साथ ही। अगले दिन सूर्योदय में क्रमानुसार चंद्र की होरा होने के कारण ही रविवार के बाद अगले दिन का नाम पड़ा चंद्रवार, चंद्र यानी सोम, इसलिए इसे सोमवार भी कहते हैं। सोमवार के 24वें घंटे में बृहस्पति की होरा होती है। इसके बाद 25वें घंटे में यानी सोमवार के अगले दिन के सूर्योदय के प्रथम घंटे में मंगल की होरा होती है, इसलिए सोमवार के बाद अगले दिन का नाम पड़ा मंगलवार। इस तरह मित्रों, क्रम से सप्ताह के सभी दिनों का नामकरण और उनका क्रम तय हुआ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो मित्रों, यह तो थी सप्ताह के दिनों के नामकरण और क्रम के निर्धारण पर एक छोटी सी जानकारी। अब बारी है एक प्यारे से गीत की।

इस गीत के साथ ही मित्रों आज के कार्यक्रम झरोखा से अनुमति दीजिए अपने दोस्त मिथिला को। नमस्कार। झरोखा।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक कर

0: Voyez.
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली भारती।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
8: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
9: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: इस संदेश के साथ ही प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम की पहली पेशकश में लीजिए सुनिए निर्मला बेन चंदन व साथियों के गाए इस पंथी लोकगीत को।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: संतोष शुक्ल के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। व इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, सुबह 11:00 से व रात्रि 9:00 से 10:00 तक। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 9:55 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज सुबह 10:10 पर। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर और रात्रि 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण पुनः आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 11:55 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी अमर गोट का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:00 का। कार्यक्रम शाम गजल का आनंद लीजिएगा शाम 5:10 पर। घर द्वार का समय होगा शाम 5:30 का। फिर संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम किसानवाड़ी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा दुधारू पशुओं की प्रजनन समस्याओं का प्रबंधन। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा सब्जी उत्पादन में मल्चिंग तकनीक अपनाएं। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का समय होगा रात्रि 8:20 का और विविध संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:00 से।
1: भाई साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे आज सुबह 10:00, शाम 5:05 पर और शाम 6:05 पर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:00 को है 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के अनुप्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
9: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
3: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
10: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
3: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
11: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश है और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
12: More from our correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
12: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, "The initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries." She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Paragana's district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of six candidates are in the fray, including two independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panta. Congress has fielded Abdul Razak Maulna, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
13: Sarah, the latest update is the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in. And that this week, this candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election. And in this situation, the fight is among the candidates of BJP, TMC, BJP, CPIM and Congress. We can expect that peaceful voting trend can continue throughout the day. Sarah.
12: Right. Thank you so much, Kalyan, for that update. Moving on, West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force, BSF, for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More from our correspondent.
8: Yesterday, at the State Secretariat Nobanno, Chief Minister Shubhendu Odigari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions, and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000 kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers, 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration.
14: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
12: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathineni, said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
15: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
12: Mr. Parvatani's remarks came after Pakistan's representative raised the issue of Jammu and Kashmir at the debate. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest. So the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. President of Cyprus, Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranadhir Jaiswal, said, President Christodoulides' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership, and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. The state visit comes at a moment when Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanathan, Melur MLA, will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Raman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. Inter Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heat wave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
16: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today, along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express, in an exclusive, writes, Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
12: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
17: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं रामविलास पटेल और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रवि आनंद।

0: आप मन के मयारू कार्यक्रम हेलो संगवारी ये मा आप सबो के स्वागत है। आज के ये कड़ी मा आप मन के संघावा मैं राम विलास पटेल मोर डहाले राम राम जय जुहार। संगी हो छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति लोक गीत ले सजे रहते हमार हेलो संगवारी ये मा आप मन के फोन आते और आप मन के पसंद की गीत ला सुना थन। तो आज के पहली फोन काकर है तेला चला देखी और उठाई ये पहली फोन ला कार्यक्रम आवे हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी के जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार पहुँचे।
0: राम राम जय जोहार रवि शंकर चंद्राकर जी के स्वागत है अभिनंदन है।
1: जी बहुत गर्मी करत है भैया और ये गर्मी बता थे कि भविष्य में हम मल्ला सचेत हो जाना है कि पर्यावरण के रक्षा खातिर हम सब मल्ला श्रोता मल्ला जुड़ मिल के पेड़ पौधा लगाना है साथ ही साथ उसका संरक्षण करना है ताकि जो बढ़त टेम्परेचर है उसका निवारण किया जा सके।
0: बिल्कुल आमा अमली के रूप लगाना है कहा तो।
1: जी जी जी
0: और बताओ पलारी डहर का हाल चाल है।
1: पलारी डहर सब ठीक है और ये तो गर्मी बहुत पड़त है।
0: जी रायगढ़
1: साहब आज से नौतपा भी शुरू हुए थे नौतपा के असर दिखत है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल दिखत है हमरो रायगढ़ शहर में भी दिखत है आस पास में भयंकर गर्मी हवे। बताओ संगी आज के कार्यक्रम में का सुमधुर लोक गीत रही पसंद आप
1: आज है? के कार्यक्रम में है कैसे सब मयू के बखान कर दो मैं तुझी अधव जोड़ी हो तुरे
0: खातिर। वाह वाह बहुत बढ़िया गीत है बैतल राम साहू जी एक गीत लगाई है।
1: जी जी जी
0: चला फिर मिलजुल के सुना हमर रेडियो सेट मा आप मन के पसंद के सुघर गीत ला फोन कराए कर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जय जोहार राम राम
0: राम राम।

0: हेलो संगवारी,
1: रामचंद्र देवांगन बोला था।
0: रामचंद्र देवांगन जी, सरंगपाल ले। कैसे
1: ओ अच्छा,
0: है सरंगपाल के दार हाल चाल जी?
1: अभी गर्मी है,
0: गर्मी तेज है।
1: धान कटाई गलत चला थे, तेंदुपान
0: अब केंदु पान तोड़ाई हो गए?
1: के यानी बंद हो गए है।
0: अच्छा,
1: 2-4 दिन तो रही गई संपन्न करती,
0: तो धान के उत्पादन कैसे गर्मी में?
1: ऐसा कमजोर है सर।
0: कमजोर है। और कार्यक्रम कैसे लागते? का कार्यक्रम बड़ा सुघर लागते आकाशवाणी रायगढ़ के
1: कार्यक्रम
0: जी? का माध्यम से सुनता?
1: यूट्यूब द्वारा सुनता।
0: अच्छा, बढ़िया सुनाई देते
1: देखे ना सफाई
0: जी। तो आज के कार्यक्रम में का पसंद करिया?
1: जवाहरलाल त्रिवेणिया रागिनी स्वर में है, बैलाला सजा दे बे भाटो।
0: गाड़ी बैलाला सजा दे बे, वाह बहुत बढ़िया गीत है संगवारी, आप मन के पसंद। तो
1: शादी हो
0: हाँ, तो फिर लेवा शादी में सुनाओ ये सुघर गीत ला, फोन करा माया जोर के कर बर। धन्यवाद है सरंगपाल ले, रामचंद्र देवांगन जी,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी
0: जी, स्वागत है संगवारी।
1: जय जोहार, राम राम।
0: जय जोहार, राम राम। बताओ कौन हाव, कहाँ ले बोला था तेला बताओ संगवारी।
1: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था संगवारी।
0: हाँ, विकट श्रोता हवा, आप मन अब्बर सुन था कार्यक्रम मल्ला और समीक्षा भी लिख था। हाँ, सूर्यास्त सूर्यास्त लग गए और बढ़िया लागत है। हम ला मदनपुर कवर्धा डहा ले भोरम देव के नगरी के डहा ले फोन आते थे।
1: हाँ, आप पटेल जी बोला था इसे लगा थे।
0: जी जी, पटेल जी बोला था मैं।
1: हाँ हाँ, बहुत खुशी लगा थे पटेल जी आपसे बातचीत।
0: जी जी जी,
1: और अपर दिन हो गई तो आप बातचीत हो।
0: जी जी, आप मन के हमारे ईमेल देखा रही थे और समीक्षा भी समय समय में जब भी फुर्सत मिलते लिखता, हमारे चिट्ठी मिलिस के डहार भी आवत रही थे।
1: हाँ, के
0: हाँ, और कैसे लागत थे गर्मी के मौसम?
1: अब गर्मी के मौसम तो अपन प्रकृति दिखाई के अपन गर्मी के प्रशंसा। अब गर्मी ज्यादा होते थे हमारे दुरुपयोग करे के कारण हमारे पर्यावरण असंतुलन हो जाते दिन हो। एक खेती सब गर्मी बेमौसम बरसात ये सब कुछ होते।
0: जी जी,
1: तो ओला हमला बढ़िया बनाए बस अवैया है बरसात के मौसम, तो सब जन ला मिलजुल के पेड़ पौधा लगाना है।
0: हाँ,
1: और दूसरों व्यक्ति मतलब भी प्रेरित करना है।
0: जी,
1: जागरूक करना है।
0: अवैया महीना में
1: पर्यावरण बढ़िया बन सकते।
0: अवैया महीना में 5 तारीख के हमन विश्व पर्यावरण दिवस मनाबो।
1: आओ,
0: तो हमला पेड़ पौधा लगाए पर अभी ले प्रयास करना है, गड्ढा खुदाई करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, कर योजना बनाना है अभी।
1: बिल्कुल कहे। हाँ, जरूरी है।
0: हाँ,
1: जब तक काल योजना नहीं बनाबो तब तक हमारा काम सिद्ध नहीं होगा।
0: धरती दाई के कोराला श्रृंगार करना है तो पेड़ पौधा लगाना पड़ी, और कार्यक्रम ला शानदार बनाना है तो गीत भी सुनना पड़ी।
1: आओ, सिद्धुल कहे।
0: तो बताओ गीत का रही आप मन के जी।
1: आज राम नारायण ध्रुव के स्वर में हवा चल धरती में संवार का भैया, यही गीत ला आप सुना।
0: बहुत बढ़िया गीत है, राम नारायण ध्रुव के गीत हवे और ये गीत

0: हेलो संगवारी।
1: हाँ हेलो संगवारी
0: जी, स्वागत है जी। कौन बोला था भैया?
1: हाँ ध्रुवराम साहू व्रत भैया, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश ले।
0: जी अभी गर्मी के छुट्टी चले थे।
1: हाँ छुट्टी लग गया।
0: कैसे सदुपयोग करा था गर्मी छुट्टी के?
1: गर्मी के भैया लेके मतलब समर कोर्स बेसिक जानकारी हम लोग बताया था।
0: हाँ हाँ,
1: और समय में खेती के सारी काम तक चले थे भैया, खेत उड़द लगाए हैं वो है।
0: आकाशवाणी से का लाभ होते आप मन ला?
1: आकाशवाणी से भैया अपन किसान किसान वाली कार्यक्रम है उखर से, समय समय में खेती किसानी संबंधी नवा नवा जो नवाचार खेती की सारी की जानकारी सब मिल जानकारी मिल जाते भैया।
0: जी जी,
1: और समसामयिक की जानकारी मिल जाते हमला। हमारा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलते, गीत के बारे में सुनील मिलते, बहुत अच्छा लगते।
0: आप मन शिक्षा का हो तो का लड़का मन भी या लड़का मन के पालक मन भी कहता कि रेडियो सुने बार कि वहाँ से जानकारी मिलते जो न कि आप मन के भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में काम आई, ऐसे कुछ बता था?
1: हाँ बता था भैया, बता था और समय समय में सामान्य ज्ञान और समय की जानकारी के लोग
0: वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: और रेडियो जुड़े से भैया कई बार लगवाते देखो फोन हम
0: जी जी
1: बातचीत भी करते
0: जी। तो ध्रुवा राम जी बताओ आज के कार्यक्रम में पसंद का रही आप मन के?
1: आज कार्यक्रम में भैया विदुषी ममता चंद्रकर और कुलेश्वर ताम्रकार जी मन की आवाज में है, आजा भी अमरैया के तीरी वाले की सुना देते हो।
0: वाह बहुत बढ़िया गीत है संगवारी आप मन के पसंद। तो लेवल जी सुना आप मन के अमरैया के तीर माँ ये सुघर गीत ला, फोन करे कर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया, धन्यवाद।

0: हेलो संगवारी,
1: हाँ पटेल भैया, राम राम।
0: जय जोहार संगवारी। बतावा जी, कहाँ ले बोला था?
1: ये रानी गांव नगरी खिलेश कुमार साहू बोला तू
0: हाँ, अखिलेश कुमार साहू जी, बतावा हाल चाल कैसे है रानी गांव नगरी के डहार?
1: क्या? धूप बहुत करत थे
0: अच्छा
1: अभी,
0: अच्छा
1: काफी से एक वहाँ पानी भी दे रही थी हवा धूप का करके, लेकिन उसने धूप भलक तेज है, बहुत ज्यादा घाम लगा थे और
0: हाँ,
1: लू लगे थे पूरा ही।
0: तो गर्मी के समय में पशु मन में लू लगा थे ला कैसे पहचानी, बताओ? आप मन तो डॉक्टर हवा शायद।
1: हाँ, जैसे पशु चर के आते बाहर से वहाँ पर लार आते, तो समझ जाओ कि लल्लू लग गए थे, तो ये
0: जी
1: सब से बचाव बिल्कुल ठंडा पानी नमक मिला के साफ सुथरा पानी पिलाना है और ठंडे जगह मारना है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी मिली। इस कार्यक्रम कैसे लागत है आकाशवाणी रायगढ़ के आप मल्ला?
1: बहुत अच्छा कार्यक्रम हमला लगा थे, चाहे हेलो संगवारी हो, चाहे हेलो संगी हो, किसान वाड़ी कार्यक्रम, लोक रंजनी, ये सब चीज के कार्यक्रम सुनत रहन थे, बहुत ही अच्छा लगा थे। खबर भी में जानकारी से भरे कार्यक्रम रखे
0: जी
1: और
0: जी
1: साथ
0: जी
1: में जो मुख्य मुख्य कार्यक्रम है और आप मन यूट्यूब के माध्यम से हम उसी में मिल जाते, तो
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: अच्छा हमारे जो खुशी है वो दुगुना हो जाती।
0: हाँ, तो आज की खुशी लाओ दुगुना करे बर का की सुनिए, बतावा।
1: मिथिलेश साहू और ममता चंद्राकर से ही थी चिड़ैया ने कई गोटी मारो गोंदा फूल मोर्चा की जुआनी, चिड़ैया ने कई गोटी मारो, ये इसने टाइप की थी, अगर सुना दे।
0: लेवा संगी सुनो जी, आप मन के रेडियो सेट मा आप मन के मन पसंद कलाकार के ये सुघर गीत ला फोन करा हमारे डहार, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी आपको मतलब।

0: संग सुमधुर गीत और संगीत के क्रम हर यही थिरावा थे। आज के ये कार्यक्रम में हमला तकनीकी सहयोग मिले रही से B.S. ध्रुवे के, प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने रवि आनंद। तो संगवारी हो जाय के बेरा मा सबो झनला राम राम जय जुहार।
1: फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी का प्रसारण अभी हो रहा था। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे रामविलास पटेल और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, सुबह के 9 बजे हैं। विविध भारती कार्यक्रम अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दूसरा आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर जारा, धूम श्रृंखला, चक दे इंडिया, एक था टाइगर और बंटी बब्बी जैसे फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं हम ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि आज की फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनूं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

ऋत्विक तलाशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर जारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छत्वम संग वदत्वम सम वो मनांसि जानताम। साथ चलें, साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे बाप पहले आप।

0: उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरे बाप पहले आप। दोस्तों आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की

0: सुनना न भूले प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats, yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: की शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की

0: फिल्म मर्दानी, इसमें मुख्य
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की निगरानी करेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं। इन्हीं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकास खंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल रमिंडे का कल जनगणना 2026 प्रक्रिया में शामिल हुए। जनगणना 2026 की प्रक्रिया के तहत नगर निगम के अधिकारियों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से जनगणना के 33 बिंदुओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने निर्धारित प्रश्नों के आधार पर राज्यपाल से व्यक्तिगत, सामाजिक और अन्य सामान्य विवरण लिए। राज्यपाल ने जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर की जोन कमिश्नर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0, पीएम जनमन कार्यक्रम और पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर में अब से कुछ देर बाद गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस शिविर का उद्घाटन कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण भी हो रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम विवरण में अब से कुछ ही पलों बाद यानी सुबह 10:10 का समय होगा कार्यक्रम लोक संगीत का। वह इसके ठीक पश्चात यानी कि 10:30 पर सुनिएगा आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे सुबह 11 बजे से, अपराह्न 12 बजे से और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 बजे का। कार्यक्रम शाम गजल का आनंद ले सकेंगे शाम 5:10 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का समय है शाम 5:30 का, जिसमें आज के गोठ का विषय होगा आधुनिक भारत में सूचना क्रांति के प्रणेता राजीव गांधी। चर्चा के अंतर्गत सुनेगा नियमित जांच और सावधानी अपनाएं, कैंसर दूर भगाएं, इस विषय पर चर्चा। योजना के अंतर्गत सुनिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना विषय पर जानकारी। रांधबो कुडबो इस क्रम के अंतर्गत सुनिएगा गर्मियों में लाभदायक है शीतल पेय। हमारे केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा दुधारू पशुओं की प्रजनन समस्याओं का प्रबंधन। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा सब्जी उत्पादन में मल्चिंग तकनीक अपनाएं, इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि 8:20 पर और विविध संगीत का समय होगा रात्रि 10 बजे का। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनेगा रात्रि 10:30 पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: AIR at 90.
1: स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मंसूरी सिंह व साथियों के गाए लोकगीतों को। लीजिए सुनिए सबसे पहले कर्मा लोकगीत मंसूरी सिंह व साथियों के स्वर में। कार्यक्रम का नाम लोक संगीत।

कर्मा लोक गीत अभी आप सुन रहे थे मंसूरी सिंह व साथियों के स्वर में। रचना बीडीएल श्रीवास्तव की थी। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: मंसूरी सिंह व सत्यभामा सिंह के गाए इस विवाह लोक गीत को अभी आप सुन रहे थे। रचना बी डी एल श्रीवास्तव की थी। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। अगला लोक गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस बहुत ही छोटे से अंतराल के पश्चात।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स।

सत्यभामा सिंह और पंकज श्रीवास्तव के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। रचना BDL श्रीवास्तव का था। इस लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है।

बैन पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में, इस संगीतमय सफर में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आप ही की पसंदीदा गाने के साथ। जी हाँ, इस गाने की फरमाइश आई हमें पत्र लिखा आप सबने, जतुका किशनपुर से हैं, आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम और चांदनी नाज। यही गीत पसंद किया, पत्राया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां का, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से यही गीत पसंद किया। फरमाइश करता है, पत्र लिखा गौशाला पारा रायगढ़ से है विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता इसी गीत के पसंद करता। पत्र लिखा फोटानी चौक नरहन स्ट्रीट से फटपटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारा सर, बीबी आराध्या और ललन मिश्र, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से हैं बीके मिश्रा, गुंजन पारा सर, अमित सुमित छोटू और लल्लू पंडित। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर राजा हिंदुस्तानी का ये बहुत ही पॉपुलर गाना अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोग्राम का नाम आपकी फरमाइश।

0: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ये थे इस गाने के बोल। फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा सबीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश और आपके पत्र, आपके ईमेल हमारे प्रोग्राम में बहार ला देते हैं, खुशियां ला देते हैं। अगला गाना जल्द ही।
1: आकाशवाणी एट 90।
2: नमस्कार, मेरा नाम मंदाकिनी गुप्ता है। 90 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं ये अनुभव करती हूँ कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा को आगे भी ले जाती है। इस दृष्टि से आकाशवाणी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया है। आकाशवाणी ने शुद्ध, सरल और प्रभावशाली हिंदी को जन जन तक पहुँचाया है। साहित्य, कविता, नाटक और संवादों के जरिए इसने न केवल भाषा को समृद्ध किया बल्कि श्रोताओं के मन में हिंदी के प्रति प्रेम भी जगाया है। हिंदी की मधुरता और भावनात्मक गहराई को जिस सजीवता के साथ आकाशवाणी ने प्रस्तुत किया वह सराहनीय है। इसने विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ किया है। मेरी हार्दिक कामना है कि आकाशवाणी आने वाले समय में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की सेवा इसी समर्पण के साथ करती रहे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करे। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला नगमा आप सबकी पसंद पर। इसके लिए हमें पत्र लिखा पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। यही गीत पसंद किया, हमें ईमेल आया आप सबका। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। यही गीत पसंद किया, पत्र आया। श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल से हैं, ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश दिवंगन, मधु, हिमांशु और अंकित दिवंगन।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
5: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत लीजिए, सुनिए आप सबकी पसंद पर। इसके लिए हमें पत्र लिखा आप सबने। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, लीलू और

रितु सिंह, यही गीत पसंद किया। धनबाद झारखंड से ये पत्र आया अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह और बेबी समृद्धि का। यही गीत सुनना चाहा। पत्र आया झाझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा और रवि आरती सिंह का। इसी गाने के पसंद करता है पत्र लिखा पटना बिहार से भुवनेश्वर सिंह और लीलू सिंह ने। इसी गाने की फरमाइश आई पत्र आया सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से हैं। कारी राय, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र डोली साकरा से हैं, जयंत कुमार बैरागी। इसी गाने के फरमाइश करता पत्र लिखा झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, हर्ष खुशी, शुभम वाधवानी और कन्हैया लाल तीर्थानी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का ये गाना हेमलता के स्वर में। गीत संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: कार्यक्रम आपकी फरमाइश की अगली प्रस्तुति में लीजिए सुनिए आप ही की पसंद पर ये गाना। इसके लिए फरमाइश की पत्र आया इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा का। यही गीत पसंद किया लक्ष्मीबाई अनाजमंडी रोड वंदना नगर इंदौर से हैं। राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति और प्रयाग चौधरी। यही गाने की फरमाइश की, हमें पत्र लिखा सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृजकांत सारथी बेमितरा से। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से ये पत्र आया नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर लव स्टोरी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत है आरडी बर्मन का। प्रोग्राम का नाम आपकी फरमाइश।

0: याद आ रही है लव स्टोरी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गीत। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीता आरडी बर्मन का। श्रोताओं, आप भी अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं आकाशवाणी रायगढ़ के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसके लिए पत्र व्यवहार का पता नोट करें। पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। पिन संख्या है 496001। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shrotarayagad@gmail.com पर। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश से मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिएगा आकाशवाणी रायगढ़। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आपकी आशा, ये एल्बम का नाम आशा भोंसले की आवाज, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाज़ों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना, संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स ये एल्बम का नाम है, अलीशा की आवाज़, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले।

0: पी बलराम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम, जय वालिया की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, संगीत ललित का।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश क्रय की शिकायतों की निगरानी करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फॉर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फॉर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। पालकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के

लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। यह प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, में रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। जांजगीर चांपा जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाज़ें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषाएं उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में, तो सुनिए आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेन प्यार करना तेरे जियो नहीं लवड़ी ओ साथी हो।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं

0: अग्नि।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: അയ്യോള അമ്മ മുത്തുക്കോളി കൊവ്വാരിഹട,
1: അമ്മ മുത്തുക്കോളി കൊവ്വാരിഹട.
2: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बात।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: अरे पुरुआ के झोंकवा में

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के

फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत की जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाज़ा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे, और बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई ख़त लिखूं जिसे पा के तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफ़र तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन ज़माना ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको ख़त लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र के हम सफ़र साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां ख़तों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है ये। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सकें तो ज़रूर बताइए।

उपभोक्ताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है, उनकी भी कुछ बातें हैं वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है, वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है, बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिएं और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हवा के साथ साथ, जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफ़र में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफ़र प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूँ और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूँ, घर की चाय जो मेरी हमसफ़र यानी कि धर्म पत्नी ने बना कर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूँ और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफ़र में चाय का जिक्र हो तो सफ़र का मज़ा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मज़ा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बनफूल, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई ख़ास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हों तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज़्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालाँकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती लेकिन वो बातें हमें सबसे ज़्यादा ठंडक देती है। चलिए धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है?

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी, इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफ़र की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफ़र के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताज़ा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना। लता जी की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आर डी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस ज़माने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूँछ पकड़ कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें

पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज़्यादा आपको ठंडक देती? ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं, जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है ऐसा लगता है बहती हवा

लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी के सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाज़ा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छूमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है।

हमारी विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमल तास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज़ गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज़, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने कि सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टानें, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सकें, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताज़ा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की आवाज़ें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफ़र यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता, और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched।
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण

0: दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
5: चाय, ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: मगर गल सुन कजरे वाली।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में भाभी की चूड़ियाँ इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना। संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी, और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
2: लेकिन इस वजह से वहाँ पे भी गर्मी होने शुरू हो गई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीज़ें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकल

0: वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीज़ों से डर होता है, फोबिया होता है,
1: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है हर एक को होता है।
0: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
1: वो उन्हें अपना बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सोमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
1: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए के गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
0: चाय चाहिए
1: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
0: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियाँ जो हैं वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात
1: करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परम्पराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राही बाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक़ रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो वो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपन त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो असल किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहाँ से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
0: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाभलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
0: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
1: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: मिल जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज़्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं हैं ना, वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है?

0: तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
1: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
0: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें सारी परेशानी जिससे समस्याएं लड़ाई झगड़े सब हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए या जैसे हमें मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं। और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
1: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा चिंता थकान इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
1: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था. ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई.
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे. और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है. और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था. तो भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है.
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं. इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है. लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है. अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपये की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर,
1: स्वादिष्ट मिलती है,
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं.
1: बिल्कुल. और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है. अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं. कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें.
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो जाए.
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो.

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की,
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा ना वा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना। मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं।
1: कप चाय मिल जाने पे
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो, क्या बात है भाई,
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
1: एक और मैसेज होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जाँच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया की, मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, तुरंत से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है।

0: इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियाँ या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते लगता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आँखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आँखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आँखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आँखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आँखों की सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आँखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों को आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आँखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तेज़ गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज़्यादा तो वहाँ से आँखें जल्दी सूखती हैं। और आँखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आँखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आँखों को भी साफ पानी से ज़रूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तेज़ धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा ज़रूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है?
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा, दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ 2011 से, मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खास कर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सखियों की बात होती है और सखाओ की बात होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम। बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और इसमें गाने के बोले डक डक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटरव्यू सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहा है रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलिम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आँख में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उन

0: लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगी कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं, क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोलने दिल में सनम की सूरत आंखों में आंसू दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। दिल में।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है इधर, आजकल तो पक्षे की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं कामकाज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो कामकाज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा भारतनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये है कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी, जो हमारे कांगड़ा में हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल, गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रखो होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ, हेलो सहेली में भी, और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं। जब मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी,
1: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता, सीखने में टाइम लग जाता है। और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुफियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा। मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है। वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम जी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आमची मुंबई सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी मेरा। वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेट भी होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सैलून से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: तौबा।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैम नमस्ते
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए क्या हालचाल हैं आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है,
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को भी कम पिलाना चाहिए सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले, ग्राम सामनाकर तालुका कागल शिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, रान मेवा है। वह तीसरे साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, कार्यक्रम सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा बोलूया चांगे भले। सासन काठी डुले ज्योतिबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले ज्योतिबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले डुले।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर, एसबी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई। दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक पुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पोड़िपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, पेटला, ललितपुर, सरगा, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आपने सुना। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम शाम गजल। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर द्वार शाम 5:30 पर। कार्यक्रम घर द्वार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आधुनिक भारत में सूचना क्रांति के प्रणेता राजीव गांधी, इस विषय पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा चर्चा, नियमित जांच और सावधानी अपनाएं, कैंसर दूर भगाएं। इसके अलावा आप सुनेंगे योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। साथ ही सुनिएगा रांधवो कुडवो के अंतर्गत गर्मियों में लाभप्रद है शीतल पेय। समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6:00। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:10 पर। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसानवाणी, हमेशा की तरह शाम 7:20 पर। कार्यक्रम किसानवाणी में आज चर्चा का विषय रहेगा दुधारू पशुओं की प्रजनन समस्याओं का प्रबंधन। साथ ही सुनिएगा नसीहत, सब्जी उत्पादन में मल्चिंग तकनीक अपनाएं। इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से आप सुन पाएंगे रात्रि 8:20 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00। हमारे केंद्र से विविध संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00 से। और अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत आज रात 10:30 से। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: आप भी अपने सुझाव और फरमाइश आ सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुण पत्र मिला और लोग हमें सकते हैं। जिस कार्यक्रम ईमेल भेजते हैं उसका नाम, सब्जेक्ट फील्ड आवश्यक है। कार्यक्रम की ईमेल किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrota@gmail.com, shrotaraigarh, यानी shrota@gmail.com।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम-ए-गज़ल।

0: हरिहरन और रक्षा श्रीवास्तव की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड

0: फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अधिक से हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी अपने सुझाव और फरमाइश आ सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुण पत्र मिला और लोग हमें सकते हैं। जिस कार्यक्रम में उसका नाम सब्जेक्ट फिल्म आवश्यक है। कार्यक्रम की किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrota@gmail.com shrota@gmail.com।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: दिलराज कौर की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

डॉक्टर उज्ज्वल राय की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी और इसके साथ ही कार्यक्रम शाम गज़ल अब समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार सुनैया दाई बहनी दीदी लैका सियान संगी जहुरिया सबू झनला रीना के राम राम। अबहिनी हो आज के गोटकी बैठकी माँ का गोट बात करना है तेला सबले पहली हमन चर्चा करबो। तबहिनी हो आज के गोठ में आधुनिक भारत में सूचना क्रांति के प्रणेता राजीव गांधी पुण्यतिथि के अवसर में उमर उखर पुण्य स्मरण करबो के दबा। और चर्चा के विषय रही नियमित जांच और सावधानी अपनाएं कैंसर दूर भगाएं। बहनी हो आज योजना में रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बहनी हो आज के क्रम रांधबो कुडबो में रही गर्मियों में लाभदायक है शीतल पेय। और बहनी हो ये तो रही हमारे गोट चर्चा के विषय और उकरे संग संग सुनबो गुरतुर लोकगीत। तबनी हो हम ना चलबो आज के गोट टहर आधुनिक भारत में सूचना क्रांति के प्रणेता राजीव गांधी। बनी हो राजीव गांधी जुनला हमन सब भारत के ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में सुरता करथन जो विश्व पटल मा भारत ला 21वीं सदी मा आगू बढ़े के आगू रहे के सपना देखें। उमन भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहीं जो युवा सोच और उत्साह से आधुनिक विचार ला बढ़ावा देवें। राजीव गांधी युवा जोश के संग संग दूरदर्शी भी रहीं हैं जोन भाप ले रहीं कि ये आने वाला जो समय है वो तकनीकी ज्ञान के हवें और भारत ला विकसित देश मन के संग कदम से कदम मिला के चलना है ता यहाँ भी तकनीकी ला अपनाना होही। और यही सोच के साथ उमन हाँ आगू बढ़ी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में। और बहनी हो भारत में कंप्यूटर दूरसंचार और आधुनिक तकनीक ला बढ़ावा दीन हवे उखर प्रयास सफल हुई से और भारत सूचना और संचार माध्यम के जो तेजी से विस्तार हुई से भारत में शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी के उपयोग बढ़िस युवा मल्ला आधुनिक तकनीक से जोड़े के प्रयास करीन हवे। कंप्यूटर और टेलीकॉम के क्षेत्र में एक नया दिशा मिली से गांव गांव तक एसटीडीपीसीओ के सेवा जो है उकर खूब विस्तार हुई से उस समय में और दूर संचार व्यवस्था जो है वो मजबूत हुई। कंप्यूटर और इंटरनेट के युग के शुरुआत ला प्रोत्साहन मिली सवे और कंप्यूटर शिक्षा ला बढ़ावा दीन हवे। बहनी हो ज्ञान तो भारत में पहली से ही रही सवे लेकिन ओकर उत्तरो उत्तर विकास होए ओकर बर एला तकनीकी से जोड़ना जोड़े के जो काम रही से वो हा ओला राजीव गांधी जी करीन हवे और एक मजबूत आधुनिक तकनीक के नींव रखी से भारत में प्रशासन में भी तकनीक के जो तकनीकी है ओला शामिल करीन हवे रेल में और बैंकिंग के क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक से उमल्ला जोड़ीन हवे। देश में आईटी उद्योग के जो नींव हवे ओला मजबूत हो उस समय उखर योगदान से ही आज हमार भारत है विश्व के प्रमुख आईटी देश में गिने जाते। आज हम यहाँ देखथन कि हर तरफ जो आधुनिक शिक्षा तकनीक हवे कंप्यूटर हवे वो सब जो के जो देन हवे वो कहीं ना कहीं पहनी हो देन हवे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के राजीव गांधी जी के प्रसाद से। ता आज उकर पुण्यतिथि में हमन हा उमल्ला पुण्य स्मरण करथन और बहनी हो हमन ये स्मरण हा सार्थक हो ही जब हमन हा अपन आप ला भी तकनीक से जोड़बो। बहनी हो ये बहुत जरूरी है कि आज के समय में अगर कदम से कदम मिला के चलना है तो तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी हवे। ता हम सब ला ज्ञान पर हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमेशा सीखे के जो है वो कोशिश में आगू बढ़ना चाहिए। तब नहीं हो ये तो हो से गुट और गुट बात ला हम अगवाबो अगर पहली चला सुनिए लोकगीत ला।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बनी हो सुनेन लोकगीत, बनी हो एक पहली सुनेन संगीत, और पहली संदेश सुनेन, और पहली हमन सुनत रहें लोकगीत जकर गायक कलाकारी ने खुशी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन। आओ बहनी हो, हमन अपन के गोट बात में आगू बढ़वो। चर्चा के विषय हवे नियमित जांच और सावधानी अपनाएं, कैंसर दूर भगाएं। बहनी हो, कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी हवे, लेकिन समय में जांच और सही उपचार अगर हमन ये सावधानी रखथन तो कैंसर से बचाव संभव हवे। एक सही जानकारी और सतर्कता से आप निरोगी जीवन ला अगवा सकता हो। कैंसर के इलाज संभव है, लेकिन एकर बर जागरूकता बहुत जरूरी है। आप अपन शरीर के विषय में जतिक सतर्क रहो, वतिक ही रोगराही से दूर रहे में आसानी होते। एकर बर अपन शरीर के नियमित जांच जो है वो जरूर कराना चाहिए, ताकि कोनो भी रोगराही ला दूर रखे जा सके, या शुरुआत में ही बिना देर किए रोग के पता चल जाए। और ये भी बहुत जरूरी होते कि यदि आपके परिवार में अनुवांशिक रूप से कोनो रोग राही है चले आते, तो इकर जांच करवाना तो और भी बहुत जरूरी हो जाते। तब बिना घबराए बहनी हो, इकर विषय में घबराए के भी जरूरत नहीं है, बल्कि नियमित जांच जो है वो बहुत जरूरी है, और सावधानी जो है इकर प्रति रखना बहुत जरूरी है, ताकि रोग से बचे जा सके। कैंसर जतिक जल्दी पहचान में आते, वतिक ही जल्दी इकर इलाज जो है वो संभव होते, इकर इलाज में सफलता मिलते। ये बात ला हर समय याद रखना है कि गंभीर स्थिति बने से पहली उपचार संभव होते। शरीर में कोनो भी प्रकार के असामान्य लक्षण दिखते तो उकर प्रति सावधान जरूर रहा, उला नज़रअंदाज झन करा। जैसे कि शरीर में कोनो भी प्रकार के गांठ या उभार, सूजन, लंबा समय से गला बैठना, आवाज के बैठना, लंबा खांसी हुआ थे, या अचानक वजन में गिरावट आना, भूख ना लगना, लगातार कमजोरी बने रहना, थकान, दर्द, ये जैसे सामान्य लक्षण, ये सब लभी गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। बनी हो, नारी प्राणी मल्ला अपन सेहत के प्रति और भी ज़्यादा जो है वो सचेत रहना चाहिए, और कोनो भी प्रकार के असामान्य मासिक धर्म, रक्त स्त्राव, या कोनो भी प्रकार के शरीर में कोनो भी प्रकार के जो बदलाव दिखाते, कोनो जो असामान्य है, जो लगा थे कि जो हमेशा से कुछ अलग होते, तो एकर प्रति विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि कोनो भी गंभीर स्थिति से पहले ही बचे जा सके। और ऐसे अगर कोनो भी प्रकार के दिखाते दिक्कत, तो जरूर करके आप मन निसंकोच डॉक्टर करा संपर्क करा। कोनो भी प्रकार के संकोच बनी हो, आप मन के सेहत में भारी पड़ सकते, ता कोनो भी प्रकार के इमा लाज शर्म के बात नहीं रहे, और जरूर करके आप अपन के नज़दीक के डॉक्टर करा ही शुरुआत में आप मन जरूर करके संपर्क करा, और डॉक्टर के सलाह बहुत जरूरी है। तो अपन शरीर के नियमित जांच आप मन अपन शरीर के प्रति सचेत रहा। बनी हो, कैंसर के बचाव के प्रति सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली तो यही है कि नशा से दूर रह जाए, शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सबसे दूर रहे में ही सबके भलाई हवे। नियमित व्यायाम और योग जो है उला अपनाना, संगे संग स्वच्छता के विशेष ध्यान रखना, संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना, ये सब बहुत जरूरी है आप मन के सेहत ला बढ़िया रखे।

ये भी बहुत जरूरी है कि कोनो भी दवा जो है वो बिना डॉक्टरी सलाह के जान लेवा ये ला हर हमेशा हमन है ये बात ला कहत रिथन कि कोनो भी दवा ला बिना जानकारी के बिना डॉक्टरी विशेषज्ञ के सलाह के अपन मन से अपन डॉक्टर जन बना डॉक्टर से पूछ के ही कोनो दवाई ला लेवा कोनो भी प्रकार के चाहे कतो भी वह सामान्य से सामान्य कोनो सर्दी बुखार भी होते तो जरूर करके आप मन है एक बार सलाह जो है डॉक्टरी जरूर लेवा ये बहुत जरूरी होते बहनी हो और बहनी हो ऐसने ही आप मन हाँ अपन तो खुद भी जागरूक रहा ये सब के प्रति आप मन हाँ स्वयं जागरूक रहा और दूसर ला भी अपन पारा परोस ला अपन आस पास लोग लैका मन ला भी एकर प्रति जागरूक करना चाहिए। बहनी हो कोनो भी कष्ट कोनो भी बात है तो ओला खुल के डॉक्टर करा बेहिचक बतावा हमेशा याद रखा कि कैंसर के पहचान में देरी जो है वो है जानलेवा होते जतेक जल्दी रोग के पहचान हो जही वतेक जल्दी कैंसर ला हराया जा सकते तब बहनी हो आप मन हाँ जागरूक रहो और ये जागरूकता आप मन के स्वास्थ्य पर बहुत जरूरी हवा ता आप मन हाँ ये प्रति जरूर करके जागरूक रहा और कैंसर के प्रति सावधान रहा नियमित जांच करावा सावधानी रखा और कैंसर ला दूर रखा तब नहीं हो ये तो हो इसे गोट कर देवा और हमन हाँ योजना के विषय में आगू बढ़बो त प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बनी हो सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामगार मन बर शुरू किए गए ये सुघर पेंशन योजना हवे ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगार मन ला भी बुढ़ापा में कोनो भी प्रकार के आर्थिक परेशानी झन होवे उमन ला आर्थिक परेशानी से बचाया जा सके। जब शरीर निशक्त हो जाते तब मजदूर कामगार मन ला एक निश्चित धनराशि आर्थिक मदद के रूप में सुनिश्चित रिथे ये योजना के तहत 60 वर्ष के बाद 3000 तक के पेंशन मिलते योजना के लाभ असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है वो मल्ला ही मिलते जैसे कि है रिक्शा चालक घरेलू कामगार है मजदूर हवा है ठेले वाले हवा है घर भवन निर्माण में लगे हुए श्रमिक हवा है खेती किसानी से संबंधित जोन भी मजदूर हवा है वो मन ये योजना के जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ ले सकते हैं। कोनो भी 18 से 40 वर्ष तक के लोगन मन आवेदन कर सकते उखर जो मासिक जो आय है वो 15,000 या उखर से कम होना चाहिए। मासिक योगदान जो है बहनी हो प्रीमियम वह 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक है जो कि उम्र के हिसाब से हवा है और यह हर महीना जो है वो जमा किए जाते पेंशन राशि जतेक पेंशन राशि जो है बनी हो वो तो मिलते ही कहते और लाभार्थी जतेक योगदान करते हो कर बर है ना तो वो हिसाब से वतके ही धनराशि जो है वो सरकार हा तको देते और ये पेंशन हा सीधा बैंक के जो है आप मन के खाता में उमा आते कर्ज के माध्यम से आप मल्ला मिलते पति पत्नी दोनों जन ये आवेदन ला कर सकते हैं इकर लाभ उठाए बर यदि लाभार्थी के मृत्यु के दशा में बहनी हो पति या पत्नी ला पेंशन के 50% जो भाग है वो फैमिली पेंशन के रूप में मिलते यदि कोनो मन से मन बीच में ये योजना ला छोड़ना चाहते तब ये जमा राशि जो है उकर ब्याज सहित जतेक भी जमा हवा उला वापिस कर दिए जाते यानी इला बीच में आप मन छोड़ भी सकते हो कोनो कारण से आप योजना के वे बनी हो सुघर योजना आप मन भर भी हरे आप मन जरूर करके इकर लाभ लेवा और अपन के नज़दीकी जनसेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल में जाके इकर जो है आप मन हाँ ये योजना के लाभ पर आवेदन कर सकते हो जानकारी ले सकते हो तब नहीं हो ये तो हो इससे योजना के गोड बात हमन हाँ गोड बात ला अवगवाबो पर पहली चला सुनिए लोकगीत ला

बनी हो लोकगीत सुनेन जेकर गायक कलाकार रहीन हैं कविता वासनिक और साथी बनी हो हमन हा अपन के क्रम में आगू बढ़बो ता गर्मियों में लाभदायक है शीतल पेय। बनी हो शीतल पेय नाम से ही पता चलत है कि जलना पिए ले हमारे शरीर में ठंडक पहुँचते और ताजगी महसूस होते स्फूर्ति महसूस होते और ये बहुत जरूरी हो जाते बनी हो जब मौसम अतिक चिलचिलावत घाम के बेरा में हवा और गर्मी के मौसम में घाम के तपन से शरीर जब व्याकुल लग जाते ना त जब हमन हा सादा पानी भी पीथन ठंडा तो ऐसे लगते एकदम मन तृप्त हो गए लगते बड़ सुकून महसूस होते त ऐसे जो गुण हवा वो है शीतल पेय में हवा। और बहनी हो ये तब और भी बढ़िया रही थे जब एमा हमन हा मिलाथन ओमा नींबू मिला देथन नींबू पानी बना देथन आम पन्ना बना देथन और शीतल पेय के रूप में नारियल पानी छाछ हवा अपन घर के बढ़िया मस्त और बेल शरबत है गन्ना रस है ऐसे जिनिस मन ला जब पीथन बहनी हो तपत देहला बड़ ठंडक महसूस कराते और ये महसूस तो होते ही संगे संग शरीर ला ऊर्जा भी देते कदेवा ये बहुत जरूरी हो जाते बहनी हो कबर की देखा तो आजकल हमन देखथन कि घाम प्यास के दिन में पसीना बहुत आते ता ये पसीना के रूप में बहनी हो हमारे शरीर से पानी जो है वो बाहर निकलते तब हमारे शरीर में पानी की कमी झन हुआ ओकर बैलेंस बने रहे एकर बार बहुत जरूरी होते कि हमन ओकर पूर्ति करत रहन त हम अल्लाह ऐसे जो है बनी हो पानी जो है या शीतल पेय में कुछ मिला करके जैसे मौसम के हिसाब से जो हमारे शरीर पर बढ़िया हवा नींबू है आम है ये मतलब मिला करके हमन हा ओला बढ़िया जो है ओला हमन हा पियन ताकि स्फूर्ति ताजगी रहे और संग संग हमारे शरीर के जो पानी के कमी झन हुआ हमारे शरीर में एकर हमला बहुत जरूरी करके हमला ध्यान रखे गया हुआ है। और बहनी हो अगर हमन हा शीतल पेय पिया थन तो ओकर से हमार जो पाचन क्रिया भी है वो भी बढ़िया रहते ये मौसम में और संगे संग हमन कोनो भी ऐसे पेय जो इस्तेमाल करथन जो उपयोग में लाथन पिया थन बेल है छाछ है नींबू आम पना कोनो भी प्रकार के आजकल के दिन में जो हमार मौसमी फल फलहारी मिलत है बहनी हो हमन अगर एक एला शरबत के रूप में लेवथन त एकर हमन ल फायदा ही मिलते और जो अभी के मौसम में जो गर्म हवा लू चलते ओकर से भी हमार रक्षा होते त लू जैसे गर्म गर्म हवा से बचे बर अपन शरीर के जो तपन है ओला शांत करे बर ये शीतल पेय बहुत ज़्यादा जो है वो कारगर होते तो जरूर करके ये सबके जो बहनी हो आजकल मौसमी फल फलहारी मिलते ओला अपन भोजन में एक जरूरी अंग के रूप में जरूर करके शामिल करना चाहिए और ये स्वास्थ्य पर बहुत जरूरी होते हमारे शरीर ला ठंडा रखते और बहनी हो बहुत जरूरी ये भी हवा है कि घाम प्यास के जो दिन हवा उमा हमन हा ध्यान रखन कि अगर हमन ला प्यास नहीं भी लगत है तब भी हमन ला पानी के जरूर है वो लेना चाहिए मात्रा ये बहुत जरूरी है कि पानी हमन हा समय समय में बिना प्यास के भी पियत रहन बहनी हो शरीर ला ताजगी ठंडक पहुँचाए बर हमार जो ये प्राकृतिक फल फूल के रस जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत लाभ पहुँचाते हमन हाँ अभी जो मौसम के हिसाब से कोनो भी प्रकार के नींबू मिला थे तरबूज मिला थे बेल मिला थे लीची मिला थे हम आम भी मिला थे है ना तो ये सब के हमन हाँ पेय बना सकथन और हमार अपन के जो शरीर है ओला ताजगी से भर सकथन और ये हमारे सेहत पर भी बढ़िया होते तो जरूर करके आप मन हाँ अपन घर में तैयार करो। और बहनी हो ये बात भी ध्यान रखो कि बाजार में जो डिब्बा में बंद मिला थे शीतल पेय वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर नुकसानदायक है तो आप मन हाँ वो जो डिब्बा बंद बाजार के जो है ओकर से बचा और अपन घर में बनावा तुरंत ताज़ा ये स्वास्थ्य पर लाभदायक है ये बात आप मन माना और लोग लैका मन ला भी सिखावा। और बहनी हो गर्मी के मजा लेवा स्वस्थ रहा मस्त रहा और हुआ थे जाए के बेरा त देवा विदारी नला राम राम जय जोहार।

महिलाएं अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी घर द्वार। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:10 से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। कार्यक्रम फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शाम 6:20 से। प्रादेशिक समाचार हिंदी में आप सुन पाएंगे शाम 6:45 से। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:00। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसानवाणी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम किसानवाणी में आज आप सुनेंगे दुधारू पशुओं की प्रजनन समस्याओं का प्रबंधन, साथ ही सुनिएगा नसीहत सब्जी उत्पादन में मल्चिंग तकनीक अपनाएं, और इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। रात्रि 8:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00 से। हमारे केंद्र से कार्यक्रम विविध संगीत सुनिएगा रात्रि 10:00। अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात्रि 10:30 से। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण होगा सुबह 6:10 पर। कार्यक्रम कृषि चर्चा सुनिएगा सुबह 6:30 पर। रामचरित मानस आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। देशगान कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 6:50 पर। अपनी पसंद के गाने आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा शाम 5:00। ये थी जानकारी कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की।
4: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: 6:10 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके पर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। ये समिति अशासकीय स्कूल में फीस बढ़ोतरी और पुस्तक गणवेश खरीदी के शिकायत मन के निगरानी करही। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ह जम्मू जिला कलेक्टर मन चिट्ठी जारी करे है। जारी आदेश में कहे गए है कि शासन के संज्ञान में ये बात आए है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूल मन को तिले अभिभावक मन ला पुस्तक गणवेश और दूसर जिनीस एक ही फर्म ले खरीदे बर बाध्य करे जाते। फर्म के अप्रत्याशित कीमत के सेती अभिभावक मन ऊपर वित्तीय बोझा बाढ़त है। उमन के शिकायत के तुरते निराकरण बर जिला और विकासखंड स्तर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे गए है। केंद्र सरकार ह कहे है कि उपभोक्ता पेशेवर और सौंदर्य बोध क्लिनिक डहर ले कोनो भी कॉस्मेटिक उत्पाद के प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करे के अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ह कहे है कि कॉस्मेटिक के प्रयोग केवल मानव शरीर में लगाए छिड़के और स्प्रे करे बर होना चाहिए। ये उत्पाद में प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग, भ्रामक दावा, इलाज बर कॉस्मेटिक के इस्तेमाल और इंजेक्शन ले कॉस्मेटिक के प्रयोग अधिनियम और नियम के उल्लंघन माने जाही। प्रदेश में चलत सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया शुभारंभ करें। ये मशीन करीबन 4.5 करोड़ रुपया के लागत ले स्थापित करे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि नवा सिटी स्कैन मशीन के शुरू हुए ले तीर्थखार के मरीज मनला इलाज के बने सुविधा मिल पाही। एकर पहली मुख्यमंत्री ह अपन सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर में तेंदुपत्ता संग्राहक मन ले गुट बात करीन। ओमन तेंदुपत्ता संग्रहण काम के जायजा लेवत संग्राहक मन के समस्या और ओमन के आजीविका ले जुड़े बुनियादी सुविधा के जानकारी लेन। श्री साय कहिन कि वनोपज संग्रहण करैया वाला मन के जीवन में समृद्धि लाना सरकार के प्राथमिकता है। रामानुजनगर क्षेत्र के वनोपज सहकारी समिति डहर ले ए साल निर्धारित लक्ष्य ले ज्यादा मात्रा में तेंदुपत्ता संग्रहण करे जा चुके हैं। बता दें कि ए साल राज्य सरकार है तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा तय करे है। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते। ए दिवस ल मनाए के उद्देश्य युवा मन ल आतंकवाद और हिंसा के प्रवृत्ति ले दूर करना है। ए मौका में आने आने शासकीय और अशासकीय संस्था मन में आतंकवाद विरोधी शपथ घलो दिलाए गिस। आजे के दिन बछर 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमला के शिकार हुए रहिन। भारतीय सेना ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है। आने आने श्रेणी पर निर्धारित ए ऑनलाइन परीक्षा अवैया 1 जून ले 5 जून तक और एकर बाद 8 जून ले 12 जून तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहर भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में एकर बर कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिहां हरेक दिन परीक्षा के आयोजन 3 ले 4 शिफ्ट में करे जाही। जम्मू पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। धमतरी जिला के युवा मन ला रोजगार के मौका उपलब्ध कराए बर जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करे गए है। एकर तहत जिला के बेरोजगार युवा, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी, डिप्लोमा धारक मन के संग्रह कुशल और अर्धकुशल श्रमिक मन ला देश के आने आने राज्य में रोजगार के मौका दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
4: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
3: आगू बढ़वो बाचे समाचार कुती। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली 22 मई के रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। ये कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में संझा 6:30 बजे ले आयोजित करे जाही। दू सत्र में होवैया ये कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उप शास्त्रीय प्रस्तुति होही। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश कर ही उन्हें श्वेता शिवाले डहाले उप शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुति दे जाही। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर है बताइन कि आकाशवाणी है लोक प्रसारण के रूप में पाछू 90 बछर में उल्लेखनीय काम करे है। इस दौरान आकाशवाणी है सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम ले अपन ध्येयवाक्य के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के परिकल्पना न साकार करे के काम करे है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर है घलो स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन ल गांव गांव तक पहुंचाए में अहम भूमिका निभाए है। राज्य सरकार है कहे है कि मछली पालन ल प्रदेश में कृषि के दर्जा दे जाए ले एक लागत में लगभग 10% की कमी आए है। एखले मछली पालक मन ल बने आर्थिक फायदा घलो मिलत है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक में राखे गए चिंतन शिविर ल संबोधित करन मछली पालन मंत्री रामेचा ने ताम हकीन कि प्रदेश के किसान मन बर मछली पालन अब ओमन के समृद्धि के साधन बन के है। ओमन कहिन कि मछली पालक मन के आमदनी बढ़ाए बर आने आने वैज्ञानिक तरीका अपनाए जाते। इही कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए है। श्री नेताम कहिन कि बछर 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन ल 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। बता दन कि मछली उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ देश में 6वां स्थान में है। यहाँ सालाना 9.5 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा मात्रा में मछली के उत्पादन होवत है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC है ए पछर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा पर भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 ठन नवा परीक्षा केंद्र शुरू करे है। एकरे संग अब केंद्र के कुल संख्या 83 हो गए है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवार मन ए नवा केंद्र पर आवेदन करे है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है कहे है कि एकर उद्देश्य केंद्र में भीड़ ल कम करना और परीक्षा प्रक्रिया ल अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। ये बछर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई के रखे जाही। परीक्षा पर कुल 8,19,000 ले ज्यादा आवेदन मिले है। इही बीच रायपुर में UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिला के 22 केंद्र में 2 पाली में होही। पहली पाली बिहनिया 9:30 बजे ले 11:30 बजे तक और दूसर पाली मझनिया 2:30 बजे ले संझा 4:30 बजे तक संचालित होही। और अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है आज नवा रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक में जम्मू टेंडर प्रक्रिया ल पारदर्शिता के संग पूरा करे बर कहिन। केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर अवैया 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए है। एकर बर 5 ले 18 बछर के भारतीय नागरिक पात्र हुई। भिलाई पुलिस है नौकरी दिलाए के नाव में करीबन 7.5 लाख रुपया के ठगी के आरोपी ल गिरफ्तार करे है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंचा सीलिंग ले गिरे के सेती एक मजदूर के मौत हो गए। पुलिस हा मामला के जांच शुरू कर दे है। जांजगीर चांपा जिला के अर्जुनी गांव में तरिया में डूबे ले 8 और 9 साल के 2 सगे बहनी की मौत हो गए। जांजगीर चांपा जिला के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर पाछू संझा तेज रफ्तार चार चक्का गाड़ी के अनियंत्रित होके पलटे ले 1 छात्र समेत 2 मनखे के मौत हो गए। उन्हें एक जन दूसरा छात्र घायल हो गए। औ दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काली 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप रखे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौं फेर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग हा निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना हा ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित करते है। और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
5: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए हम तुम पे मरते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं और उत्तम सिंह का संगीत है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, आप सुनिए लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में डर फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं शिव हरी।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की युगल स्वर में अभी आपने सुना लम्हे फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे शिव हरि। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: दिल तो पागल है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे और उत्तम सिंह का संगीत था। और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हिंदी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: अरे रीमा।

0: पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
0: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। यह समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की जाँच करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा अभिभावकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। संबंधित फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से अभिभावकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जाँच समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुज नगर में तेंदुपत्ता संग्राहकों से बातचीत की। रामानुज नगर पटना में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने रामानुज नगर में मिनी स्टेडियम और पटना में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत वे 10 जून तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे।
7: सुशासन तिहार चल रहा है, 10 जून तक चलने वाला है और अभी करीब 10 जिले में हमारा प्रवास हुआ है, बाकी 23 जिले बाकी हैं। तो प्रतिदिन हम 3 जिला जा रहे हैं और शाम को तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक करेंगे और गांव में जाते हैं, लोगों से

0: बातचीत करते हैं, चौपाल लगाते हैं, तो पूरा फीडबैक मिलता है कि हमारी योजना कहाँ तक गाँव में पहुँच पा रही है।
1: राज्य सरकार ने कहा है कि मछली पालन को प्रदेश में कृषि का दर्जा दिए जाने से इसकी लागत में लगभग 10% की कमी आई है। इससे मछली पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ भी हो रहा है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक पर आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए मछली पालन अब उनकी समृद्धि का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि मछली पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए हैं। श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन को 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये का विदेशी राजस्व मिलने की संभावना है। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण और पीएम जनमन कार्यक्रम तथा पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और निगरानी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही अब केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच रायपुर में यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिले के 22 केंद्रों में 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा में 8,449 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर करना है। इस मौके पर विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं में आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलाई गई। आज के दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आगामी 1 से 5 जून तक और इसके बाद 8 से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर दिन 3 से 4 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिनमें रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 5 से 18 वर्ष के भारतीय नागरिक पात्र होंगे। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले होते हैं। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम सहित राज्य के 14 जिलों के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 5 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर ग्रीष्म लहर चल सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। धमतरी जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जिले के बेरोजगार युवाओं, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा डिप्लोमा धारकों के साथ ही कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा है कि जिला प्रशासन युवाओं को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। बेमित्रा में पिछले 15 दिनों से चल रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। इस दौरान शिविरों के माध्यम से करीब 6,000 किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। रायपुर रेल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 19 से 22 मई तक स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। भिलाई पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 7.5 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंची सीलिंग से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अर्जुनी गांव में तालाब में डूबने से 8 और 9 वर्ष की 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इसी जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार 4-पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 1 छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कल 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहले सुनिए मेरे जीवन साथी इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत था।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, अब सुनिए कटी पतंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और RD बर्मन का संगीत है।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत था।
1: आकाशवाणी F90।
2: नमस्कार, मेरा नाम रचना मित्तल है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के गौरवशाली अवसर पर मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। एक युवा महिला के रूप में आकाशवाणी मेरे जीवन में सिर्फ एक माध्यम ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। इसकी आवाज में वो अपनापन है जो हर उम्र और वर्ग के श्रोता को अपनी ओर खींच लेता है। चाहे सुबह की सकारात्मक शुरुआत हो, दिन भर की जानकारी हो या शाम के मधुर गीत, इसके रूप में हर पल एक सच्चा दोस्त साथ रहता है। आज के इस डिजिटल दौर में भी आकाशवाणी ने अपनी सादगी, विश्वसनीयता और गुणवत्ताओं को बनाए रखा है। यह मनोरंजन के साधन के साथ साथ शिक्षा, जागरूकता को संस्कृति का भी एक प्रबल माध्यम है। दूर दराज के क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच सराहने योग्य है। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने अनगिनत यादें बनाई हैं और लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। मैं कामना करती हूं कि आकाशवाणी इसी तरह अपनी मधुर आवाज और बेहतरीन कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरित करता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मेरी ओर से बधाई। धन्यवाद, रचना मित्तल।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना आग गले लग जा फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत था। और इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी के बैठक में जम्मो किसान संगी संगवारी मन ला धवल किशोर गुप्ता के राम राम जय जोहार संगवारी हूँ। आज आप मन ले भेटा पर गेन आनी वानी के गोट करबो और गीत गोविंद घला करबो और माझा माझा मा संदेश घला सुनाबू और संगवारी हो दिन ही आज गुरुवार के दिन और एक संग हम संगवारी हो शुरुआत करबो आज के थोकन जान लेबो हमार गोट के विषय ला हमार बैठक में काका गोट करबो यही क्रम में हम आप मतलब बता दें संगवारी हो आज की बात के हमार विषय रही दुधारू पशुओं की प्रजनन समस्याओं का प्रबंधन एक मौसम के हाल चाल जानबो संग में नसीहत में हम गोट करबो सब्जी उत्पादन में मल्चिंग तकनीक अपनाए एक संग आज के टिप में हमार गोट के विषय रही फार्मरी आईडी किसानों के लिए क्यों है जरूरी संगवारी एक संग आज के किसान के क्रम में हम आप मतलब सुनवाबो ग्राम चिटका कानी विकास खंड रायगढ़ कि हमार कृषक संगवारी हैं रक्षपाल खमारी जी एमन मखना की खेती करके बहुत ही उन्नत विधि ले करत हैं और एमन अपन के खेती किसानी में बहुत ही विकास के अग्रसित रद्दा में हैं तो संगवारी हो जानबो एमन कैसे करत हैं एक संग हमन चर्चा करबो धरती पर सबका अधिकार जीवों को दें सम्मान और प्यार चर्चा करबो भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी के पुण्यतिथि आज मनावत हन ये माँ गोट हो ही संग माँ गोट करबो आज है सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस संग माँ चर्चा करबो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस अब एक संग गोट करबो दुनिया का लोकप्रिय पेय चाय अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस संगवारी वो ये तो रही आज के हमार गोट के विषय और एक संग हम शुरुआत करबो आज के मौसम के डहार ले संगवारी वो देखा मौसम के हाल चाल अगर हम देखबो तो मौसम ऐसने है कि देखा माझा माझा माँ धोखा गर्रा करा थे और थोकन धोखा गर्रा करते तो एकर ले हमार मौसम रहते यह परिवर्तन होए के संभावना बने रही थी लेकिन ऐसने माझा माझा मा अभी जेन अघमनी हर करा थे और ऐसने बाढ़ गए तापमान हर संगवारी हो आप मतलब गला बच के रहना ही ये 44 से 45 डिग्री तापमान जब जावत थे तो एकर ले हमेशा हमला सावधान रखना पड़ी हमला चेत रहना पड़ी कि कहीं भी अगर घर ले बाहर निकलत हन तो संगवारी हो हमेशा हम काला चश्मा के उपयोग करें मोड़ माँ पागा बांध के हमला चलना ही टोपी लगा के चलना ही और संग माँ हमला खाली पेट घर ले नहीं निकलना ही हम हमेशा कुछ न कुछ हम खा के निकली और प्रयास करें संगवारी हो कि पानी के ठंडा पानी के पोटली हमार संग माँ हमेशा बने रहे और हो सके तो टिफिन घला हमार संग माँ हम रख के चली काबर बाहर के खाना संगवारी हो और अपन घर के ये माँ हमार जन स्वास्थ्य रहते यार अब्बड़ अकन प्रभावित होते फर्क पड़ते तो हम प्रयास करें कि जेन खाना ले हमार जन शारीरिक स्वास्थ्य है देह के यार बढ़िया रही ऐसने ही हमला खाना खाना चाहिए अगर जेकर ले बिगड़ जाते ऐसने खाना ला हमला त्याग करना चाहिए तो भैया हो अगर हमार जिनगानी के नैया ला बढ़िया चलाना ही गाड़ी ला मजबूत करना ही तो हम प्रयास करें कि ऐसने हमला संतुलित आहार हमला करना ही संतुलित आहार मा आने वानी के फल मूल ऐसने मन के हम करें जूस के उपयोग करें हर प्रकार के प्रकृति में आज खाए के जिनिस ही लेकिन संगवारी हो आज कत का मन के है जे मन की तामसिक आहार ही एमन ला पसंद आते और ये ला करके अपन के जीवन एमन जो है नुकसान करत हैं अपन के जन देह पान है यह नठावत है संगवारी हो तामसिक में हमार जन मन के विकार रहते मन के जन शांति रहते यू और घला बढ़िया नहीं रहे हमार मन में आनी बानी के अशांति विचार उत्पन्न हो ही आनी बानी के हमार मन में कुविचार हमार उत्पन्न होते लेकिन अगर हमार मन

0: सुविचार हम अगर सोचत हन, बढ़िया हम सोचत हन, अब एकर ले अच्छा हमर विकास के रद्दा में हमर मन ला हम लगात हन, तो बाहर गोती अंग मन और हमर नहीं भगे। इला कहे जाते जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन। तो संगवारी हो आप मन जेन भी चीज आप मन सेवन करा था, खा था, पिया था, तो इला आप मन प्रयास करे कि संतुलित आप मन आहार ला करा, और मौसम के अनुसार ले हमन अपन के आहार विहार ला ढलाना पड़ी। संगवारी कबू कबू का करथन कि हम मौसम के हमला चेत नहीं रही, मौसम देखत हन कि अगर ठंड ज़्यादा है और ठंड के वक़्त में अगर हम ऐसने ऐसने जिनिस ठंड वाला खात हन तो एक ले नुकसान हुई। अब जैसने अभी गर्मी चला थे और गर्मी के वक़्त में हम ऐसने खाना खावत हैं जे न पचत नहीं है, तो ऐसने हमला खाना नहीं खाना ही, ऐसने खाना के हम उपयोग करी जेन हमार पेट ठंडा रहे और हमार स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमार कोनो भी किस्म के हमार स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव झन पड़े। तो इला हमला ख्याल करना है, इला हमला जानना पड़ी, और इला जान के समझ के अगर हम अपन के खान पान में अगर हम सावधानी रखत हन तो संगवारी निश्चित ही हमार स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रही और हम अपन के जम्मो प्रकार के बूता काम ला बढ़िया ले करी सबो। तो संगवारी वो देखा अब तापमान बढ़ा थे और एकरे बाद में ज़्यादा नहीं संगवारी हो कुछ ही दिन के बाद में 24-25 तारीख ले जाना था आप मन लग जाते 9 तप्पा, यानी 9 दिन तक ऐसने टाइप की धूप की रोशनी है पड़ती, सूर्य की रोशनी ऐसने पड़ती कि एकर ले हमन ला अलकराहा हो जाथन, हम अलग जिया हो जाथन, कहाँ जाए कहाँ है। हम प्रयास करबो ये 9 तप्पा ले गल पाँचे बार हमेशा हमला ऐसने खान पान सब ला सावधानी ले करना है, और 9 तप्पा मापन की हमेशा चेत राख के हम गलत चेत रखबो, और अपन ज़्यादा जेन हमार दादा बाबा मन है ते मन के गलत चेत राखी, और अपन लोग लैका और पशुपालन गला राखी हैं छोट छोट एहू मल गला हमला सावधानी ऊपर रखना है। संगवारी हूँ ज़्यादा तेज हो जाते घाम और वो बखत में अगर हम बाहर निकल जाएं या हमार पशु मन बाहर निकल गिन तो वो बखत में गला नुकसान हो जाते, कबू अचानक चक्कर आ जा ही धूप ज़्यादा हो जाती तो चक्कर आके गिर के हम अचानक जो है कतका संगवारी है जेमन की आज ऐसने अचेत अवस्था में हो जाते हैं और होए के बाद फिर दोबारा जो कोमा में चले जाते हैं। तब भैया इला आप मन चेत रखा कि धूप आज धीरे धीरे तेज होते तो एकर ले हम ला सावधानी रख के अपन बूता काम ला करना है। तो संगवारी वो देखा ये तो रही सी आज के हमार मौसम के हाल चाल, और एकरे संग संगवारी वो देखा अब बखत कहते आज के हमारे कृषक प्रश्न में चला आप मन नोट कर लेवा, ओकर बाद में फिर हम बैठकी के शुरुआत करबो। तो संगवारी हूँ आज के हमार कृषक प्रश्न मंच में हम आप मन ला बता दी, आज के हमार प्रश्न ही बढ़िया ले नोट कर लेवा। फार्मरी आईडी किसान मन बर काबर जरूरी होती। संगवारी हूँ आप मन अपन के उत्तर लिख भेजिए एक बार और बढ़िया ले। आज हमार किसान संगवारी मन जेन हमार प्रश्न रही थे बैठकी के वो प्रश्न ला आप मन नोट कर लेवा, और यही हम कोट करबो ते माँ एकर उत्तर घला आप मन ला मिल जाही, और ध्यान दे करके आप मन अगर सुना था तो निश्चित एकर उत्तर घला आप मन लिख करके आप मन भेजिए। हमारा चिट्ठी के अगोरा रही लेकिन प्रश्न एक फिर आप मन ला दोहरा दी। संगवारी हो प्रश्न एक बढ़िया ले और नोट कर लेवा। फार्मरी आईडी किसान मन बर काबर जरूरी होते। संगवारी अपन उत्तर आप मन लिख भेजिए आप मन के चिट्ठी के अगोरा रही। एक रिसम भैया वो देखा शुरुआत करबो आज की हमर गोट के विषय ही आज के बात में ही दुधारू पशुओं की प्रजनन समस्याओं का प्रबंधन। संगवारी वो आज दिन प्रतिदिन दुधारू पशु मन के जिन प्रजनन क्षमता ही ये हर आज बहुत बड़े समस्या हो जाती। संगवारी ये माँ मेन जिन हम देखथन मुख्य रूप में एला हमला जानना पड़ी कि ये कारण काबर होते, समस्या काबर हुआ थी। भैया वो कतका संगवारी है जिमन की देखा कोठा इमन के साफ सुथरा नहीं रहे जाकर कारण ले इमा योनी मा इमन के संक्रमण हो जाते, हार्मोनल असंतुलन हो जाते, और ये माँ कुपोषण के मुख्य एकर जिन कारण है संगवारी कुपोषण, यानी सही रूप में मतलब हम चारा प्रबंधन नहीं करत हन, पोषण युक्त आहार हम नहीं देवत हन। यह घलो मुख्य कारण है। और एक संगवारी हो आज हम देखबो कि दुधारू पशु मन की जिन बार बार रिपीटेशन होना यने गर्भ नहीं ठहरे की जिन समस्या आज बढ़ जाती। संगवारी हो यह कर मुख्य कारण है कि बच्चा दानी में संक्रमण। संगवारी हो ये सब ये कि इमन की संतुलित खान पान मिनरल के भारी मात्रा में कमी यानी सही रूप में इमन के पोषण नहीं मिलना एकर कारण से बच्चा दानी में संक्रमण हो जाते। एक संग पशु के शरीर में देह में कोई भी किस्म की अगर रोग व्याधि हुआ थे यहूला हम ध्यान नहीं दें, घाव अगर हो थे तेहूला हम ध्यान नहीं रखन, तो ये सब ला हमला देखना पड़ी। एक संग गर्भपात अगर हो थे तो भी हम देखें कि का कारण है जेकर कारण से कि हमार जिन पशु है यार गाभिन तो हुआ थे लेकिन कुछ दिन बाद में ही और फिर गिर जावा थे, तो ये सब आज समस्या हमेशा बने ही। तो इला कैसे मैं दूर करबो तो हम प्रयास करें संगवारी हूँ एकर संतुलित आहार यानी कुपोषण ला बिल्कुल हमला दूर करना ही, पशु मल्ला एकदम पोषण युक्त आहार मल्ला देना ही, अच्छा साफ सुथरा पानी पिलाना ही, संतुलित आहार के संगे संगे मन के जेन कोठा ही रहन सहन जो रहे कि इला घला साफ सुथरा करें कोनो अंगले भी संक्रमण झन हो। एक संगवारी हूँ हम प्रयास करें कि अगर जेन हमार जेन दुधारू पशु है अगर इहर गाभिन में फिर आते तो हम प्रयास करें और आ करके अगर दोबारा वह रिपीट होती या गिर जाते बार बार तो एक संक्रमण ला हमला दूर करना ही, डॉक्टर ले संपर्क करें और ला एक बार बढ़िया ले संक्रमण ला इला साफ करना ही, धुलाना पड़ते साफ करना पड़ते, तो ये ला अपन ध्यान रखिए। ज़्यादातर हम यही संगवारी मतलब बताना चाहबू जे मन की आज डेयरी पालन में कतका निकतका हमार दुधारू पशु मन की इमर रख रखाव करत हैं, ये मतलब फिर बता दें कि ये समस्या समूल रूप में एक निदान हो सकते है, बस हम ध्यान रखें। अब बढ़िया ले ध्यान दे करके अगर हम चेत करबू तो ये संक्रमण बिल्कुल नहीं आए, आई बच्चादानी के संक्रमण नहीं आए, गर्भपात के समस्या नहीं हुए और कोनो भी किस्म के जेन भी आज बछिया आज पैदा हुआ थे और स्वस्थ सुंदर और टिकाऊ हर जो है पैदा हुई। तो संगवारी हूँ समूल रूप में एकर एक एक करके हमला प्रबंधन लाज देखना पड़ी तभी जा करके हम ये जिन समस्या है इला समूल रूप में हम दूर कर सकबू। तो संगवारी हूँ गोर तो होत रही लेकिन चला सुनबो ये संदेश ला।
1: माटी के सांस लौटा ही हरी खाद, अंधाधुन रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना ला सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते, सस्ता सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद, आज ही शुरुआत करो। हरी खाद पर बीज मा ढेचा सनई मूंग जैसे बीज के उपयोग कर और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लखठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क कराओ।
0: हाँ तो संगवारी देखा ये तोरे संदेश, इकरे संग हम गोट करबो नसीहत मा सब्जी उत्पादन में मल्चिंग तकनीक अपनाए। संगवारी हूँ आज नवा नवा विधि विधान तौर तरीका ये सबो जेन आवत है ये ला अगर हम अपनाबो तो निश्चित हमार खेती किसानी के जेन बूता है ये में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकबो। अब ऐसे ही आज सब्जी उत्पादन में एक बहुत ही बढ़िया विधि आए है जेन ला मल्चिंग विधि कहे जाते। संगवारी ये में बहुत बढ़िया माटी ला भुरभुरा कर लेथन, करे के बाद में बराबर दूरी में एकर देखा मेड़ बना लेथन, अब मेड़ बनाए के बाद में वो में बहुत ही नाप जोक में जतका बीजा डालना है वो बीज डाल कतका संगवारी जिमन बीज घला डालते हैं कतका इमा बहुत बढ़िया रोपाई किए जाते। अलग से हम एकर जन पौधा हम लेकर के वो पौधा के हम रोपाई करथन। तो संगवारी वो देखा इमा मल्चिंग यानी एक प्रकार से तकनीक में पन्नी ले ढक दिए जाते यानी माटी के जन भुरभुरा पना है मेड़ हेला पूरा ढक देथन और ढके के बाद में ऐसने भीतर में देखा पाइप लगाए रहथन जिमा टपक बूंद कहे जाते भीतर भीतर पाइप जा रहे थे और वही जगह में ओकर जेन छेद ला हम करथन जेन जगह में जेन हमर पौधा ही ओकर जड़ करा ही ओकर जेन छेद रहते ओला बनाए जाते। अब भैया एकर ले हमर सबसे बड़े इमा जेन लाभ है एक तो पानी के खपत कम होते, जेन भी दवा माटी डालबो सीधा जड़ में जाही, और दूसर सबसे बड़े में ही कि आप मन देखा लाभ, पहली नमी के संरक्षण, यानी पानी हमेशा जो का ठंडा के ओहर माटी में बने रही थे, खरपतवार नियंत्रण यानी बिल्कुल पटनी ढके के बाद में संगवारी कोई भी किस्म की यमा तिल मात्र भी छोटे से भी यमा जो है घास फूस भीतर में बिल्कुल नहीं हो सके, खरपतवार बिल्कुल नहीं उगे सके, काबर यमा भीतर में पन्नी डाले के बाद में कोई भी किस्म के ओकर जेन बाहर ले संक्रमण नहीं पड़े, धूप के ओमल लव नहीं पड़े, तो एकले भीतर में बिल्कुल नाश होके खत्म हो जाते हैं और कोई भी किस्म के खरपतवार उगे ही नहीं सके। दूसरा में देखिए संगवारी, वो तापमान नियंत्रण, यानी अगर मल्चिंग विधि में हम सब्जी उत्पादन करत हन तो इमा तापमान बहुत बढ़िया समान रूप से बने रही थी, जेकर कारण मा पौधा के विकास बढ़िया होते, पौधा में गलन के समस्या नहीं आए और एकर ले बहुत बढ़िया एकर जेन विकास होते यह बढ़िया रहते। संगे संग गुणवत्तापूर्ण सब्जी, यानी जेन भी जिनिस ला ये विधि में अगर हम करत हन तो संगवारी हो गुणवत्ता यानी अच्छा टाइप के, जैसे मान लो हम मखना के लगा देहन, या मान लो लौकी के खेती करत हन, या फिर हमन आनी बानी के नार वर्गीय भी हम खेती करत हन, करेला के हे, कुंदरू के हे, परवल के हे, ये सबो ला हम मल्चिंग विधि ले घला बहुत बढ़िया हम कर सकत हन। आज टमाटर के खेती यहू घला मल्चिंग विधि ले हुआ थे, तो संगवारी सब ला अगर आज हम मल्चिंग विधि ले अगर हम करत हन तो निश्चित ही कल हमन ला बहुत ही बढ़िया एकर अच्छा लच्छा गुणवत्ता युक्त फसल हमन ला मिले सकी और लाभ घलो हम ज़्यादा ले ज़्यादा इमा पाए सकबू। तो भैया हो गोट होत रही, लेकिन चला अब बारी कहा थी आज की हमार किसान संगवारी के गोट ला सुने पर, तो चला सुन ले वो आज के किसान माँ हैं ग्राम चिटका कानी विकास का रायगढ़ के हमारे संगवारी रक्षपाल खमारी जी, और ये मन बहुत बढ़िया देखा मखना की खेती करते हैं, तो चला सुन ले वो ये मन की कैसे मन मखना की खेती करते हैं। संगवारी हो प्रगतिशील किसान संगवारी के क्रम में हम आज किसान संगवारी ले भेंट करबू, और यही क्रम में पहुंचे हैं ग्राम चिटका कानी, और जहां हमार बहुत ही किसान संगवारी आज खेती किसानी में जुड़ी हैं और उन्नत खेती करके अपन जिंदगानी चलावत हैं, तो भेंट करबो संगवारी हो जानबो मन के खेती किसानी के बूता काम ला। भैया राम राम।
2: राम राम।
0: आप मन के का नाम है और आप मन कौन गाँव के?
2: रक्षपाल खमारी चिटका कानी।
0: अच्छा, रक्षपाल खमारी जी है ना। देखा तो आज आप मन के बाड़ी ला पहुंचे हन और देखा था आप मन बहुत बढ़िया, अभी जो नहीं देखा था तो यार सब मखना की खेती है अभी लगी से है ना, मखना की खेती है और यही ला अभी देखा था तो बैठे हन तो बहुत बढ़िया आज मखना की खेती दिखा थे। तो गुप्ता जी ये बतावा कि ये मखना जिन खेती लगा है ला कौन बखत में लगा रहा?
2: ये फागुन महीना में लगा रहा।
0: अच्छा, फागुन महीना में लगा रहा। अच्छा ठीक ठीक, तो ये लगाए के बखत में एक माटी के तैयारी कैसे करा इला बतावा, कतका कतका दूरिया में लगाना पड़ते बोला थोड़कन बतावा।
2: ट्रैक्टर में जोताई करके चार चार हाथ में माना बना के वाला।
0: अच्छा,
2: गार बना था
0: मान पहली जोताई कर देता ट्रैक्टर में, ओकर बाद ताले मांदा बना था। तो कते कते दूरिया में मांदा बना पड़ते लगभग
2: दूर में?
0: अच्छा, चार हाथ की दूर में नहीं आवाज है, जैसे मांदा बना था ता वो मांदा में के ठंडे में बीजा डाले है अभी?
2: तीन तीन थे बीजा डाले हैं।
0: अच्छा, तीन तीन बीजा, तो ये बीजा हर आप मन के घर के रही से किला बाहर ले ला रहा?
2: बाहर ले लाए रहे।
0: अच्छा, बाहर ले लेके आ रहा। तो छाट के लान थे तो उपचार करे वो लागते कि नहीं लागेला?
2: नहीं लागे,
0: उपचार नहीं लागेला ना, उपचारित रहते। चलो बहुत बढ़िया, तो एक बात में जैसे कि आप मन लगा था तीन तीन बीज और वो बीज लगा था तो वक्त में खातु तो का डालता हूँ थोड़ा निका जानकारी दे।
2: सुपर एरिया पोटाश।
0: हाँ,
2: गोलमर सब।
0: अच्छा, सब चीज और जैसे और खाद वाद में गोबर खाद है ये खाद मन
2: गोबर खाद छेरी लड़ी।
0: अच्छा, वो डालता ओकरे बढ़िया काला दिखा थे का बकरी खाद भी आप मन माना मिल जाते का खाद
2: मिल जाते?
0: चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हर जैसे कि लगाए के बाद में आप ये पानी ला कैसे पोला था मखना में?
2: वो गारे गारे बना देते उसमें पोला था।
0: अच्छा, तो शुरू ले पोलो कर देता कि थोड़े धीरे धीरे कम देवल लगते शुरू में जामत ले?
2: हाँ, धीरे धीरे कम देवल लगते
0: शुरू जामत तक ले।
2: हाँ, जामत तक ले।
0: ठीक कहा था। हाँ हाँ, ओकर बाद कतका दिन में बीजा हर अंकुरित हो जाते?
2: वही 10-15 दिन में निकल जाते।
0: अच्छा ठीक ठीक। हाँ हाँ, तो अंकुरित होते ओकर बाद फिर लाऊ कुछ माना उदा ला चिपे पड़ते
2: हां फिर कोड कर एक भौरी
0: हां हां
2: मंदा वाला चिप चिपा के फिर बना था
0: अच्छा बनार पड़ते अच्छा ओकर बाद ये बतावा देखा तो मखना के में इमे जैसे कि कोई ढेकरा उकरा लगाब र अलग से नहीं लागे काम
2: नहीं लागे भुइयात में फरते
0: बहुत बढ़िया माने भुइयात में है फरते हन चला ठीक ठीक माने मखना के खेती आज आप मन के देखा था तो ये जन मखना दिखा थे तो लगभग यहाँ अभी जैसे कि अब चालू होगी से निकले बार तो यहाँ लगभग के महीना तक लगातार निकलते
2: दो महीना तक निकलते
0: दो महीना बाकी अब कतला कतला बरखा के किलो के होते यार
2: पाँच किलो छह किलो
0: आखिरी पाँच किलो छह किलो था बहुत बढ़िया है देखा तो मखना के घलो महंगी रहा भी बढ़ा जाते तो ये के भाव में घलो कतका पड़ा था किलो हिसाब में
2: वही पच्चीस तीस
0: पच्चीस तीस थोक के भाव में कहा चलो बहुत बढ़िया काबर अब एक एक ठन तो बिक्री करना मुश्किल होते आ थोक के भाव में दे दिया तो घर ले भी ले जाए कहा चलो बहुत बढ़िया आज मखना की खेती आप मन के बहुत ही आज चोखा दिखा थे और वैसे मक्का की ये मखना की खेती में कुछ रोग भी आदि कुछ संभावना का रहते है का ढंग के रोग मन लागते माली लागे
2: कीड़ा मकोड़ा मन लागते में
0: अच्छा अच्छा दो ही में लगाना पड़ते न चल बहुत बढ़िया है अच्छा एकर बाद में जैसे कि मखना के खेती में पानी के स्तर अगर हम देखो तो लगभग कतका कतका दिन में पानी हर माने दे ले ठीक रहते आप मन के माटी के हिसाब ले
2: आठ दिन दस दिन में देते हैं एक एक पानी
0: अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक बहुत बढ़िया माने पानी ला अपन माटी के हिसाब ले कन्हार माटी अपन के है कन्हार माटी है न तो पानी ज्यादा नहीं सोखे और जैसे का है जो न बलुआ माटी अगर रहते तो थोकन में पानी जल्दी जल्दी जेवर पड़ते कहा चलो बहुत बढ़िया गुप्ता जी आज मखना की खेती आप मन के देखें तो बहुत ही आज खुश हो गए और वैसने आज हमार जतका किसान संगवारी आज खेती ले जुड़ी और जुड़ करके मन खेती करी तो निश्चित खेती में लाभ है तो आखिरी में गुप्ता जी आप मन ये जानना चाहबो जतका संगवारी अभी आप मन के गोटा सुना थे तो आखिरी में आप मन के कहा संदेश है थोकन आप मन के संदेश लबत
2: आप मखना की खेती करा उसमें बहुत फायदा है
0: हाँ जतकी भी बेरोजगार हम संगवारी है मना है ना सबके सब खेती करें तो चला गुप्ता जी बहुत बढ़िया बताओ आप मन के संदेश है कि जतका किसान है सब आज धीरे धीरे मखना की खेती करें और ओकर ले लाभ कमाए तो गुप्ता जी आज आप मन ले भेंट पड़ेन और अत सुघर जानकारी आप मन दे एक पर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जय जोहार
2: राम राम जय जोहार
0: हाँ तो संगवारी देखा कतका सुघर जानकारी अभी हमार संगवारी दिन है और ऐसा ही अगर खेती किसानी ला बढ़िया ले अगर हम करें और बढ़िया ले जान की समझ की बढ़िया विधि विधान ले अगर किए जाए तो संगवारी निश्चित है एकर ले बहुत ही हम लाभ पा सकत हन और एकर ले हम बहुत ही जिन हमार विकास है इमा घल आगू बढ़ सकत हन तभी हो एक संग एक ठन चला सुघर अखन हम लोकगीत एक ठन सुनबो ओकर बाद में फिर हमार बैठकी के गोट करबो

हाँ तो संगवारी देखा कतका सुघर गीत अभी हम सुनेन और संगवारी वैसने माझा माझा में सुघर गीत गोविंद होत रही थे तो हमार मन हर परछर रही थी और हमार जिन बैठकी के जिन मजा रही थी यहू और घला हमार दुगुनी हो जाती और कतका सुंदर ये गीत सुने ना ये गीत माँ स्वर दे कुलेश्वर ताम्रकार और ममता चंद्राकर की स्वर में रही सी संगवारी हूँ ये तो हो गए हमार लोकगीत और एक संग हम हमार बैठकी के हम गोट करबो और चर्चा में हमार विषय है किसानों के लिए क्यों है जरूरी। दिन प्रतिदिन देखा हमार डिजिटल इंडिया जिन कहे जाते धीरे धीरे हर चीज और आज डिजिटलीकरण हो गई है और यही रूप में आज हमार किसान संगवारी मन लगलो आज यही डिजिटल में प्रवेश करना ही डिजिटल में जाना ही और जिन भी खेती किसानी आज करते हैं ये सबों पर आज एक पंजीकरण की सुविधा होगी से यानी एक किसान के आईडी बना थी और ये आईडी कहे जाते संगवारी हमन जिन पंजी हमला का होते हमार आधार कार्ड के जरूरत पड़ते और जमीन के रिकॉर्ड यानी जिन भी बीवन है खसरा है हमार ऋण पुस्तिका है एक जरूरत पड़ी और एक बैंक पासबुक की जरूरत पड़ती हमार पंजीयन हो जाते और पंजीयन संगवारी वो ई आई डी में नाना किस्म के हमला लाभ है जैसे मान निधि वाला लाभ मिला थी वो हुई आईडी में आकर के जमा हुई फसल एक कृषि अनुदान यानी कोई किस्म के कृषि में हमला अनुदान मिला थे जैसे बीज मिला थे तो वह लगला हम पा सकबो बीज है खाद है ये सब वाला हम पा सकबो एक जी बाहर मन आवा थे किसान सम्मान ले आ थे या हमला ट्रांसफर हमला हुआ थी तो एक बहुत

0: यानी कि कोई मशीन ही औजार ही ये ने कुछ नहीं है। ते मन आज एक लाभ ला उठा करके अपन आज कतका मन आमदनी लेवा थे। तो भैया वैसने फर्जीवाड़ा मंगा लूँ यह रोक हो ही, तो कब रुकी? जब हमार करा वास्तविक रूप में किसान संगवारी की जेन आईडी है, ये आईडी अगर हम बनाए रहो, फार्मरी आईडी अगर हम आज तैयार कर लेन, किसान के हमार एक पंजीयन के ठास बनवा लेन कि हम किसान हन, तो संगवारी हमला हर प्रकार के लाभ ले, कोई वंचित नहीं कर सके, सब प्रकार के लाभ हम सही रूप में पा सकबो और ले सकबो। तो प्रयास करो संगवारी हो कि आप मन के अगर नहीं बने ही तो नज़दीकी आप मन संपर्क करा, जिन जगह में आप मन के खेती किसानी के हमार संगवारी मन हमार जिन बैट उठ करते हैं और वैज्ञानिक मन जिन जगह में आप मन जानकारी दे थे, इमन ने गला पूछा अपन के नज़दीकी कृषि विस्तार अधिकारी मन ले आप मन संपर्क करके गला एकर विस्तार ले जानकारी लेकर के निश्चित रूप में आप मन गला बनावा और एकर लाभ कमावा और आप मन लाभ पावा। संग में हमार जतका किसान संगवारी आउ हैं तेहू मन गला भरपूर रूप में एकर लाभ उठाए में आप मन सहयोग कर। त संगवारी हूँ गोट के संग चलो फिर एक ठा सुनबू ये संदेश ल।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ तो संगवारियों देखा एक हम चर्चा करबू हमार गोट के विषय ही, धरती पर सबका अधिकार जीवों को दें सम्मान और प्यार। संगवारियों देखा ये जिन हमार धरती माता के अचरा ही संगवारियों सबो बरे, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे चिड़ै चिरगुन हो, चाहे चाटी ले लेके मोकरा ले लेके मनखे ले लेके जतका भी जीव मात्र हैं 84 लाख जीव जन ला कहे जाते। संगवारी ये जीव मन आज हमार कतका उपयोगी हैं तेहूला हमला समझना है। कतका हैं जे मन आज हमार किसान संगवारी मन के मित्र कीट बन करके आज खेती किसानी में लाभ पहुँचाते हैं, यानी प्रकृति के संतुलन पर संगवारी इस जीव मन के रहना अब बड़ जरूरी है। अगर ये जीव मन ला हम नाश कर देबो या जीव मन ला हम आज सम्मान नहीं करत हन, ये मतलब स्नेह नहीं करत हन, ये मतलब प्यार नहीं करत हन, तो आज प्रकृति के संतुलन में छेड़छाड़ हुई प्रकृति बहुत ही ये जेन आज बेमौसमी जेन कहे जाते संगवारी हो असंतुलन जेन हो जाते यह प्रकृति के दोहन है। प्रकृति के संतुलन में छेड़छाड़े तो मोर तो यही कहना है संगवारी हो आप मन हर जीव मात्र में आप मतलब दया करना है, सम्मान करना है, प्यार करना है। कोई भी जीवला हमला मारना नहीं है, सब जीवला समान रूप में देखना है। काबर हर जीव हमार प्रकृति पर बहुत ही आवश्यक जीव है। आज जैन जीवला बनाएगी से संगवारी कछु नहीं कछु आज प्रकृति में ओकर योगदान है। वो योगदान ला हमला जानना है, समझना है कि आज एक योगदान का है। आप मन खुद इला समझ के इला जानव समझाओ और धरती माँ सबके अधिकार ला हमला बनाए रखना ही। काकरों ऊपर हमला कोई भी किस्म के हमला ऐसने अमानवीय व्यवहार हमला नहीं करना ही। सबला जिए का अधिकार है, सबला सम्मान और सबला प्यार हमला देना ही। यही संगवारी हो आप मन आज अगर इला हम सब आज समझ जाथन तो हर जीव के रक्षा हो ही। कोई भी जीव आज प्रकृति में नष्ट नहीं हो सके, प्रकृति में हर जीव ला हम बचा सकत हन। धीरे धीरे ऐसने आज परिवर्तन हुआ थे कि कई जीव आज धीरे धीरे विलुप्त तो हो के कगार में है। संगवारी वैसने धीरे धीरे विलुप्त तो हो ही तो एक दिन ले दूर नहीं कि एक दिन ले मनखे गला धीरे धीरे विलुप्त तो हो के कगार में आ सकत है। और यही कारण है कि आज बेमौसमी आज कत का संगवारी मन

के देहे हाथ पांव न ठावती और मन के मन बेमौत आज धीरे धीरे मन के जीवन जो है समाप्त हो जाती। नाना किस्म के रोग व्याधि सबोले ग्रसित हो जाते। संगवारी वे सबले बाँचना ही तो प्रकृति के दोहन ला बचाना ही, प्रकृति के संतुलन ला बनाए रखना ही, सब जीव ला हमला समान रूप में देखना ही, तब ही प्रकृति है बढ़िया रही, संतुलन बढ़िया रही तो हमारे घर स्वास्थ्य है बहुत बढ़िया रही और लंबा समय तक हम अपन के जीवन ला हम चलाए सकबो। तो संगवारी हो गोट फिर करबो लेकिन चला फिर सुनबो सुग्घर अखन ये एक ठन लोकगीत ला।

0: हाँ, तो संगवारी देखा महादेव हिरवानी के स्वर माँ भी हम बहुत ही सुघर लोकगीत सुनत रहन। और एक संग फिर गोट कर वो संगवारी हो हमार गोट के विषय ही भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी के पुण्यतिथि। और आज हम मनावत हन आज राजीव गांधी के पुण्यतिथि संगवारी हो, यानी 21 मई 1991 के दिन ही हमार जेन पूर्व प्रधानमंत्री जेन रहिन हे राजीव गांधी जी के आत्मघाती हमला में इमन के दुखद निधन हो गए रही से। संगी आज उमन की याद में हम ये पुण्यतिथि मनावत हन, श्रद्धांजलि अर्पित करत हन। संगवारी वो यमन एक खास ऐसने विभूति रहिन हे जेमन की भारत में एक कंप्यूटर क्रांति के जनक जेन ला कहे जात रही से। संगवारी वो यने ये मन आज जेन हमार कंप्यूटर के क्षेत्र में यने आज टेलीकॉम सेक्टर की इमन नींव ला रखे रहिन हे। और जेकर कारण है कि संगी हो आज हम कंप्यूटर आज हमला देखे बर मिला थे आने वाने के काम करत हन। और दूर संचार के जन क्रांति रही से इमा मुख्य इमन के न्यू इमन राखे की भूमिका इमन के रही से। और संगी हो मताधिकार के आयु मा जन संशोधन करे रही, 1989 में जन संशोधन करे रही ने कि 21 वर्ष जन रही से पहले मताधिकार यानी मत देह के वोट देह के जन अधिकार है वो बखत में 21 वर्ष रही से तेला यमन के ही आज संविधान में संशोधन कराए के मुख्य योगदान रही से। आज जिनला 18 वर्ष कर दिया गिस और आज यही हर यमन के चलते आते। संगे संग पंचायती राज जैन नीति रही से एकर गला आज हमार जैन यमन के हमार गांधी जी जैन रहीन है यमन के बहुत ही सत्ता में विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्था मनला संवैधानिक मान्यता दिलाय में इमन के मुख्य भूमिका इमन के रही से। और एकरे संग संगी वो हर प्रयास इमन के रहे कि हर क्षेत्र में हमार नागरिक आगे रहें, इमन के विकास हुए, इमन के प्रेरणा रही। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति संगी हो यही मन के देने की 1986 में इमन नई शिक्षा नीति के शुरुआत घलो इमन करे रही ने। संगी हो इमन के पूरा भारत में मुख्य रूप में अगर हम देखी तो आतंकवाद विरोधी आज दिवस गल जैन मनाथन एकर मुख्य इमन के करतूत रही से कि हमार भारत में आतंकवाद मूल रूप में समाप्त हो, यानी कोई भी किसी के हिंसा झन होए, आपस में भाईचारा की भावना ले रहे, सब समान और एकता के भावना ले लेकर के आज इमन सब समान रूप में विकास करें, ऐसी भावना ले ओतप्रोत आज भारतवासी मल्ला कत का योगदान इमन करे रही ने। और यही कारण है आज इमल्ला हम याद करत हन। और इमन के जतका भी इमन हैं ये तक इमन के श्रद्धांजलि ला देवर आज मुख्य रूप से दिवस ला मनाया जाते। और यही ला आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस गला आज घोषणा किए गी से। तसंगबारी हो एकर मुख्य उद्देश्य यही रहते कि दुनिया जिन हमार भारत में है इमा कोनो भी किस्म की आतंकवाद पनप झन सकें, सब समान रूप में जीवन यापन करें और सब में समान भाव पैदा हो, सब में कोई भी किस्म के व्यभिचार मन में झन हो, ऐसने समर सत्ता की जिन भावना ला व्यक्त करे में इमन मुख्य भूमिका निभा रही ने। और यही ला हमला आज अगर मान के हम चलत हन तो संगवारी हूँ हमार गला आज जिन अवैया पीढ़ी आई यहू गला बढ़िया ले रह सकी। और हम सबो आज निर्भीक रूप में बिना कोई डर के अपन जीवन यापन हम करे सकबो। तो भैया हो आज हम सबोला ऐसने विभूति मन के आज श्रद्धांजलि देना चाहिए। और एकर बर आज के दिन संगवारी हो जत का भी शासकीय जिन साला मन रही थे ये जगह में गला आज ऐसने एक संकल्प लिए जाते कि हमला कोई भी किस्म के हिंसा नहीं करना ही, समान भावना में समर सत्ता की भावना में भाईचारा की भावना में हमला सब कर्तव्य के पालन करना है एकर संकल्प लिए जाते। तो संगवारी हूँ यही है कि आज जतका भी नाना किसिम की आज हम देखे बर मिलत हे, हम जानत हन ये सब महान विभूति मन के देन हे और मला याद करत हन। भैया हो गोट फिर करबो, लेकिन चला सुनी संदेश और ओकर बाद में फिर सुनबो एक ठन सुघर अखन फिर लोकगीत।
1: किसान भाई मन, का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता तो आज ही अपनावा हरी खाद, ढेंचा, सनई, लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ते, कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो संगवारी हो, ये संदेश होगी एक संग एक ठन बढ़िया सुग्घर अखन लोकगीत सुन लेबू, ओकर बाद में फिर गोट करबू।

हाँ तो संगवारी हो देखा धनिया पताल के मजा आप मन लेवत हाओ। जाना थे कि धनिया और पताल के चटनी बिना खाना पीना तो संगवारी हो बिल्कुल नहीं सोहाए। तो ऐसने रहती कि हमार जतका भी हमार संगवारी मन आज गीत गोविंद ला सुनत रही थे। संगवारी हो ये गीत अभी जेन गाय रही हैं धनिया पताल और के मजा आई गीत में स्वर दे रहे सबरी मरकाम और संगवारी के स्वर में रही से। संगवारी वो ये तो रही से लोकगीत के मजा। अब थोकन आओ हमार जेन गोट है तेला जान लेबो। संगवारी गोट के विषय में ही दुनिया का लोकप्रिय पिय चाय अब आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आज मनाए जाते। संगवारी वो देखा ऐसने हो जाते कि बिहाना के शुरुआत जेन हम करथन ये शुरुआत हमार चाय ले शुरुआत होते। कतका संगवारी है जे मन बैड टीकत है ये वो सूत के उठे नहीं रहे ऊपर में चाय पिए के बाद में ये मन उड़ते हैं। और कतका संगवारी है जे मन की बढ़िया ले नहा धो करके साफ हो करके ओकर बाद में चाय ल पिए जाते। तो भैया वो सब अपन अपन के एक ठो ये है लेकिन वास्तविक में अगर हम देखें कि हमार वैद्य मन के डॉक्टर मन के जेन कहना ही तेहू ला हम ला स्वीकार करना पड़ी मानना पड़ी। संगवारी वो चाय ला अगर सही मात्रा में और सही समय में सही वक्त में पियत हन तो एक सही रूप में हम ला जेन हमार देह है स्वास्थ्य है यह बढ़िया रही। और अगर गलत वक्त में हम पियत हन या कोई भी किस्म के हमार जेन हमार खान पानी जेन चाय भी है तेला अगर सही समय में नहीं पियत हन तो एकर ले हमारा नुकसान करती। संगवारी हूँ हमार वैद्य मन के डॉक्टर मन के कई इमन के मान्यता है इमन के कहना है कि चाय हम खाली पेट में ज़्यादा मात्रा में गला हम सेवन करत हन तहुले हमार बर अब बड़ा का नुकसान है। भैया जब भी अगर हम चाय पियत हन तो एकर मात्रा ला हमारा जानी सही रूप में यह बने रहे संतुलित रहे और तुरंत के बनाए रहे। अगर चाय ला बना करके हम राख देहन 15 मिनट अगर हो गए तो इमा एक प्रकार के एक ऐसे तत्व इमा पैदा हो जाते जे न हमार स्वास्थ्य पर बहुत ही नुकसान होते। भैया वो चाय ला अगर हम आधा घंटा रख देहन 15 मिनट ऊपर अगर हम कर देतन 20 मिनट के बाद में अगर चाय ला हम फिर पियतन या वही चाय ला बार बार गर्म करके अगर हम पियतन तो भी हमार स्वास्थ्य में बहुत ही बुरा असर पड़ते। तो ये ला हमार ला जानना ही आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस में आज एक विषय में विस्तार ले हम जानत हन कि चाय हमार स्वास्थ्य पर बढ़िया है। अगर स्वास्थ्य पर काम करत है तो ओकर देखा हर जिनिस के दो पहलू होते। एक तो हमार ला लाभ घला है और दूसर गोती हमार ला हानि घला है। लेकिन सही रूप में सही वक्त में अगर एक सेवन करत हन तो संगवारी हमार ला लाभ मिलते। लेकिन अगर गलत समय में अगर हम एक सेवन करत हन तो एक हमार स्वास्थ्य में गलत प्रभाव पड़ते। और आज यही कारण है कि कतका संगवारी मन ला आज अनिद्रा एकर समस्या बढ़त जाते अपच के समस्या बढ़त जाते आज गैस के समस्या बढ़त जाते। ये सब रोग व्याधि के जिन कारक है इहर अगर देखा जाए तो संतुलित रूप में हमन जिन बेसमय में हमार खान पान करत हन यानी हमार अतका ज़्यादा धरा रपटा बूता काम हमार हुआ थे और काम बूता में अतका ज़्यादा हमन फंस गए हन कि हमला पता नहीं है हम खान पान ला कतका बेरा में करत हन। तो संगवारी हो हमला यही कहना है कि आज ये दिवस में हम संकल्प करबो कि चाय ला हमला जतका समय में जतका जरूरत है ओकर ले ज़्यादा हमला सेवन नहीं करना है। सही मात्रा में सेवन करी और अपन स्वास्थ्य ला बढ़िया राखी ठिन्ना राखी और चोखा राखी। और संगवारी हो देखा यही आज गोट के संग में हमार बखत हर आज परावत है बखत आज कहा थे जाए के आ हमारा जाए पर घंटे हमार बाज गए। संगवारी वो फिर अवैया बैठकी में आप मन ले फिर भेटा पड़बो और आप मन संग ऐसने ही बैठकी में आनी बानी के गोट करबो। त संगवारी हूँ विदा देवा अपन किसान संगवारी धवल किशोर गुप्ता ला आप सबो किसाना संगी संगवारी मन ला राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए मन्ना डे के गाए हुए कुछ लोकप्रिय गैर फिल्मी गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत के अंतर्गत आज आपने सुना मन्ना डे के गाए हुए कुछ लोकप्रिय गीत। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए कारवां फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। मजरूह के बोल हैं और RD बर्मन का संगीत है।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार, मेरा नाम मंदाकिनी गुप्ता है। 90 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं ये अनुभव करती हूँ कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा को आगे भी ले जाती है। इस दृष्टि से आकाशवाणी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया है। आकाशवाणी ने शुद्ध, सरल और प्रभावशाली हिंदी को जन जन तक पहुँचाया है। साहित्य, कविता, नाटक और संवादों के जरिए इसने न केवल भाषा को समृद्ध किया बल्कि श्रोताओं के मन में हिंदी के प्रति प्रेम भी जगाया है। हिंदी की मधुरता और भावनात्मक गहराई को जिस सजीवता के साथ आकाशवाणी ने प्रस्तुत किया वह सराहनीय है। इसने विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ किया है। मेरी हार्दिक कामना है कि आकाशवाणी आने वाले समय में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की सेवा इसी समर्पण के साथ करती रहे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करे। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत, मजरूह के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत था।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम भरोसेमंद साझेदार की तलाश है मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: फिर वही रात है, रात के इस पहर। ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से, जयदेव का संगीत था। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का ये संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने गए, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्र।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध संगीत। पहले सुनिए आज़ादी का जय घोष, वंदे मातरम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

0: की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

आज़ादी का जय घोष वंदे मातरम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविध संगीत। पहले सुनिए पिनाज मसानी और तलत अजीज की आवाज़ में ये गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है।

0: मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए चंदन दास की आवाज में ये गजल।

चंदन दास के गाए इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम विविध संगीत समाप्त होता है। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। गिरिजा शंकर साहू का कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं आंधी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गुलजार के बोल हैं और RD बर्मन का संगीत है। और इस गीत की ईमेल फरमाइश लिखकर हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश,

लछनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रचक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, और संबलपुर कांकेर से ये फरमाइश आई है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: आपकी फरमाइश कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत। गीतकार हैं साहिर और संगीतकार हैं रवि। और फरमाइश लिखकर भेजी है आप सबने जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखवंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय और बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन और रेणु देवांगन ने।

मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना, और कार्यक्रम का अगला गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में आराधना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं और एचडी बर्मन का संगीत है। फरमाइश है आप सबकी। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, यहीं से विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्णी पटवा, और पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, वंशिका दिवाकर, यहीं से भानु प्रिया दिवाकर और नितिन दिवाकर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी

यादव। नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर और रितु राजपूत। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए हीरा पन्ना फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और आर डी बर्मन ने इसकी धुन तैयार की है। फरमाइश आप सबकी है। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ और नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज मुकेश और अंकित साहित्या। दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यशु और अंशु गुप्ता। चांदनी चौक गणई पनेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा। आप सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गाना हीरा पन्ना फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके दोस्त गिरिजाशंकर साहू ने। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच

0: भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल सुबह 5:51 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।